91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: कनिका, आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू, बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लो प्लेट दे उसको, खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी थाली से मत खिलाओ, उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड जता गई उसकी, इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
4: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
4: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे,
4: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
4: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
5: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
4: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
7: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
8: ठीक तो है।
7: का ठीक है, न चीनी है न दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
8: कह तो सही रही है निहारी का तो। मम्मी
7: क्या है?
8: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
7: आहा, बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा,
8: झूठ बोलती है।
7: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है। झूठ बोलता है, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा।

91.2 मेगा हर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं। अब ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे श्रोता हैं उन सभी को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सुबह जो है वो हो चुकी होगी और आज सुबह में थोड़ी सी ठंडक बनी हुई है। तो श्रोताओं, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, हम आपके समक्ष लेकर आ जाते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम टाइम पर और साथ ही आपका करवाते हैं मनोरंजन और साथ ही आपके साथ करते हैं बातचीत। तो आज भी बस ऐसा ही कुछ स्टूडियो का मौसम रहेगा। तो श्रोताओं, जल्दी से जुड़ जाइए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और इन्जॉय कीजिए इस कार्यक्रम को। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम इन प्यारी सी लाइनों के साथ। इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान है और जो छलक जाए वो अभिमान है। एक बार फिर से मैं लाइनों को दोहराना चाहूँगी श्रोताओं। इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान है और जो छलक जाए वो अभिमान है। बिल्कुल आप इन लाइनों से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ या ये विचार हमें क्या समझाना चाहता है। तो श्रोताओं, इस विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है और आज कार्यक्रम में आपके साथ बहुत सारी बातें लेकर हाजिर हुई हूँ मैं और ज़रूर इन 2 घंटों के सफ़र में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे कि हमें इंतज़ार होता है कार्यक्रम में

बिल्कुल श्रोताओं, आज आपकी भी तमन्ना फिर से जीने की होगी क्योंकि आज संडे है और संडे की सुबह ज़रूर बहुत सारे लोग इस गीत को गुनगुनाते होंगे, गाते होंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद यूँ कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्किंग होते हैं उनके लिए ये जो दिन होते हैं ये बहुत लंबे लगते हैं और इंतज़ार रहता है संडे का। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज है संडे, और संडे यानी कि फंडे। आप लोग समय पर उठना या कोई भी काम समय पर करना आज का दिन जो है अवॉइड करते हो, क्योंकि आज का दिन अपना होता है, हमारा अपना दिल जो करता है हम वही करते हैं। तो आज आप ही, अगर आपके मन में भी बहुत सारी तमन्नाएं जागी हैं और कुछ इरादे हैं आपके, तो आप उन्हें ज़रूर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज आपके सामने आज का पूरा दिन आपके लिए पड़ा हुआ है। तो श्रोताओं, संडे को एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन हाँ फिर से यही कहेंगे कि मौसम को ध्यान में रखते हुए। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी देंगे मौसम की, क्योंकि मौसम की हमने बात की है। बाहर का अगर मौसम मैं आपको बताऊं तो सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बिजली भी चमक रही है और गरज के साथ जो है ये बारिश पड़ रही है, और कहीं ना कहीं घर से निकलना मुश्किल लग रहा है आज। और तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस आज का धर्मशाला का जो तापमान है, और हवा में नमी की अगर बात करें तो वो है 51%। बिल्कुल श्रोताओं, हवा में जो नमी है वो बनी हुई है और ठंड जो है आज है, तो कहीं ना कहीं आपको हल्के फुल्के गर्म कपड़ों की ज़रूरत आज के दिन पड़ सकती है। साथ ही श्रोताओं, मौसम की बात हमने की है तो चलते हैं मौसम विभाग क्या कहता है आज के मौसम को लेकर, तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं। प्रदेश में मौसम ने अचानक जो है वो करवट ले ली है, जहां एक और प्रदेश भर में तेज़ आंधी तूफान और बारिश का ये दौर शुरू हुआ है। वहीं कुल्लू ज़िले में आपको एक खबर जो है वो हम ज़रूर सुनाएंगे कुल्लू की, कि कुल्लू ज़िले के आनी में दर्दनाक हादसे में 4 शिक्षकों की जान चली गई है। शनिवार को राजधानी शिमला में दोपहर बाद अचानक मौसम जो है वो बिगड़ गया, तेज़ तूफान के साथ हल्की बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट आई है। तो श्रोताओं, ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, और कहीं भी बाहर अगर आप जाते हैं तो ड्राइविंग करते समय भी ध्यान रखिए, और बहुत तेज़ आंधी तूफान हो तो थोड़ा सा अवॉइड करें घर से बाहर निकलने में। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो ये तो थी मौसम विभाग के अनुसार मौसम की जानकारी, और हम चलते हैं अपने मौसम की ओर यानी कि स्टूडियो की ओर, और आपका करवाते हैं मनोरंजन अगले प्यारे से गीत के साथ। 2 रास्ते इस फिल्म का गीत श्रोताओं अभी आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, आज रविवार है और आज रविवार को नीट परीक्षा में हिमाचल में बनाए गए 48 परीक्षा केंद्रों में करीब 19,000 विद्यार्थी एग्जाम देंगे। ये एग्जाम दोपहर बाद 2 से 5 बजे तक रहेगा। रेडियो गुंजन धर्मशाला के परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को जो आज ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में थोड़े ही देर बाद समय हो रहा है समाचारों का, लेकिन पहले सुनते हैं हम एक और प्यारा सा गीत कार्यक्रम में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब समय है समाचारों का, तो चलते हैं सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी शिमला है, अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कुल्लू जिला के आनी में वाहन दुर्घटना में चार अध्यापिकाओं की मौत, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दुर्घटना पर जताया शोक। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत किन्नौर जिला में फसलों की गुणवत्ता में लाया जा रहा सुधार। देशभर में आज स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी, और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से वर्षा का क्रम जारी। आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल के अंतर्गत शमशर गुगरा सड़क मार्ग पर कल एक वाहन के चीड़ के पेड़ की चपेट में आने से यह अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गया, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। प्राप्त सूचना के अनुसार हादसे के समय वाहन में चालक सहित कुल सात लोग सवार थे, जिनमें छह स्कूल अध्यापिकाएं शामिल थीं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: इस भीषण दुर्घटना में चार अध्यापिकाओं की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई, जबकि चालक और दो अन्य अध्यापिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से दो शिक्षिकाओं की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें IGMC शिमला रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान सनेलता बंती कौंडल, सीमा आजाद और उषा कुमारी के रूप में हुई है, तथा ये सभी बुछैर स्कूल में कार्यरत थीं। उनकी अचानक मृत्यु से शिक्षा जगत सहित पूरे इलाके में शोक की लहर है। SDM मानी लक्ष्मण सिंह कनेड ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजन को 25,000 रुपए प्रति व्यक्ति की अंतरिम राहत राशि प्रदान की गई है, जबकि घायलों को 5,000 रुपए की सहायता राशि मौके पर प्रदान की गई। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस हादसे पर चार लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह घटना बेहद हृदय विदारक है और पूरे समुदाय के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। भारत आ रहे मार्शल आइलैंड्स ध्वज के LPG टैंकर MT सर्वशक्ति ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन LPG है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। जिला किन्नौर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत कार्य तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में कुल 15 क्लस्टर संचालित किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना, लागत कम करना तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके लिए जिला प्रशासन तथा कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
3: जिला किन्नौर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत वर्तमान में जिले में कुल 15 क्लस्टर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें कल्पा विकास खंड में 3, पू विकास खंड में 6 तथा निचार विकास खंड में 6 क्लस्टर शामिल हैं। इन 15 क्लस्टरों के माध्यम से लगभग 750 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर में 125 किसान बागवानों को जोड़ा गया है, जिससे जिले में कुल लगभग 1,903 किसान बागवान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती के विस्तार को और मजबूत करने के लिए जिला किन्नौर में 3 नए क्लस्टर भी जोड़े जाने प्रस्तावित है, जिसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। इन नए क्लस्टरों के माध्यम से 150 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाएगा तथा 375 नए किसान बागवानों को योजना से जोड़ा जाएगा। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से सुमेश नेगी।
1: आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस अवसर का विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण है। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यावहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में, यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AARNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AAR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से बारिश हो रही है। धर्मशाला, मंडी तथा ऊना में भी तेज हवाओं के साथ वर्षा का समाचार है। कुल्लू तथा चंबा में बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में कल भी कुछ स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से फसलों व फलदार पौधों को नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी जारी की है। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
4: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी जारी की है, जिसके लिए कल 5 जिलों सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 5 मई तक प्रदेश में मौसम के खराब बने रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 2 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर 5 मई तक रहेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओलों के साथ बारिश होगी। ऊंचाई वाले इलाके लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, शास्त्री भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नर्सिंग संस्थान खनेरी में 17 प्रशिक्षु नर्सें टीबी पॉजिटिव। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, रामपुर में छात्राएं टीबी से संक्रमित, SDM की जांच रिपोर्ट में भी पुष्टि। CBSE की तर्ज पर अपग्रेड होंगे 300 सरकारी स्कूल, शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है, प्रदेश सरकार ने शिक्षा निदेशालय को दिए हर जिले से स्कूलों का चयन करने के निर्देश। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, मेरिट में आने पर मनपसंद पोस्टिंग, 5 से CBSE स्कूलों के लिए काउंसलिंग। दैनिक जागरण की खबर है, चलती बोलेरो पर गिरा पेड़, 4 अध्यापिकाओं की मौत, आनी की शमशर गोगरा सड़क पर बाली ओल में हुआ हादसा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुल्लू जिला के आनी में एक वाहन दुर्घटना में 4 अध्यापिकाओं की मौत, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने दुर्घटना पर जताया शोक। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत किन्नौर जिला में फसलों की गुणवत्ता में लाया जा रहा सुधार। देश भर में आज स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से वर्षा का क्रम जारी। आज और कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। समाचारों के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से सुषमा का प्यार भरा राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ जुड़े होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। इस छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, करेंगे बातचीत और आपका करवाएंगे मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। आप सभी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं

0: हो रही है मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान, तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और इस समाचारों के बाद और इस अंतराल के बाद अब कार्यक्रम में हम देर ना करते हुए आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, भाग मिल्खा भाग। इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और आप सभी को बता दें एक बार फिर से कि आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय रहता है कार्यक्रम का सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। श्रोताओं, आप कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे आज के दिन की बात। आज है 3 मई, तो 3 मई का दिन जो है इतिहास के पन्नों पर क्यों दर्ज हुआ, कौन सी ऐसी घटनाएं थी, उस पर भी हम आज नज़र डालेंगे। श्रोताओं, 1913 की तरफ चलते हैं। 3 मई 1913 को आज ही के दिन दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का बम्बई में प्रदर्शन हुआ था। साथ ही साथ आज ही के दिन 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 3 मई को हर साल दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का जश्न मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में ज़रूर हम प्रेस की स्वतंत्रता पर भी थोड़ी सी बातचीत आपके साथ करेंगे। साथ ही श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं। अमानुल्लाह खान ने ब्रिटिश भारत पर आज ही के दिन आक्रमण किया था 1919 में। 1998 में यूरोपीय नेताओं ने यूरो को यूरोपीय मुद्रा के रूप में स्वीकार करने का ऐतिहासिक फैसला किया था। साथ ही 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा जो है वो भड़क उठी थी। तो श्रोताओं, ये तो थी 3 मई के इतिहास की कुछ घटनाएं और कुछ जानकारियां जो हमने आपके साथ की साझा। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत। तो चलते हैं, आप भी सुनिए और आपके साथ हम भी सुनते हैं सिलसिला फिल्म का ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं इस समय और कार्यक्रम में इस गीत के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके साथ बात करेंगे आज के दिन की। आज हम सभी प्रेस फ्रीडम डे मना रहे हैं यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। श्रोताओं आप सभी जानते हैं प्रेस का महत्व क्या है। प्रेस यानी मीडिया हमारे समाज का आईना होती है प्रेस।

0: एक सच्चे पत्रकार की पहचान होती है। तो श्रोताओं, अब हम अपनी बातों को यहीं पर रोकेंगे और कार्यक्रम में फिर से शामिल करेंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। चलते हैं श्रोताओं, सुनते हैं टशन फिल्म का ये गीत उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में।
1: फलक तक

और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे श्रोताओं। और आज धर्मशाला में बारिश का दौर चला हुआ है, धर्मशाला ही क्या ऊना जिला में भी आज बारिश हो रही है। तो बारिश के इस मौसम में थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। और अच्छी बात है कि आज संडे है, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना है और वो भी घर में मस्ती मार रहे होंगे। तो श्रोताओं, थोड़ी सी बात हम छोटे मोटे अपने जो हमारे नन्हे नन्हे जो श्रोता हैं उनसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि संडे का एक दिन ऐसा होता है जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने जो श्रोता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो नन्हे मुन्ने श्रोताओं को भी सुषमा का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आज का दिन है मस्ती का, खेल का और सीखने का। तो श्रोताओं, आज संडे है, संडे को आप अपना होमवर्क जो है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही आप अपना पसंदीदा कोई भी गेम वो भी खेल सकते हैं। हाँ, बाहर के गेम्स शायद आज आप नहीं खेल पाएंगे बारिश की वजह से, लेकिन हाँ, अंदर बैठकर आप बहुत सारे गेम्स जो हैं वो खेल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल फ़ोन में गेम खेल सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को भी आज संडे की छुट्टी देते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी गेम्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, जो भी आपके घर में है उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए और साथ में इन्जॉय कीजिए संडे को। तो श्रोताओं, आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ेंगे एक और प्यारे से गीत के साथ, आप तक पहुँचा रहे हैं। इस गीत को लीजिए, इन्जॉय कीजिए रेडियो गुंजन धर्मशाला से इस गीत को।

श्रोताओं, सोतन फिल्म का गीत ये भी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम में समय हो गया है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर लौटेंगे हम आपके साथ, करेंगे बातचीत और गीत संगीत भी ज़रूर आपको सुनवाएंगे। तो श्रोताओं, इसी तरह से बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जिसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का, और इस कार्यक्रम में आप तक हम पहुंचाते हैं जानकारियां और साथ ही आपका मनोरंजन भी करवाते हैं गीतों के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं जानकारी। जानकारी यानी कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे श्रोताओं को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतज़ार है अपने 12th के रिज़ल्ट का, HP बोर्ड के रिज़ल्ट का। तो अब आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता है, क्योंकि बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख जो है वो घोषित कर दी है। आगामी 4 मई यानी कि कल सुबह 11 बजे प्रदेश भर के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी को आपका रिज़ल्ट जो है वो कल दे दिया जाएगा। तो ऐसे में जितने भी छात्र हैं और उनके अभिभावक हैं उन्हें राहत की सांस मिलने वाली है कल, क्योंकि श्रोताओं जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता हमारा ध्यान एक तरफ केंद्रित होता है कि कब हमारा रिज़ल्ट आएगा। और बहुत सारे श्रोता और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो भी कल के दिन का इंतज़ार बड़ी ही बेसब्री के साथ कर रहे हैं। तो आपका इंतज़ार अब होता है ख़त्म और कल आप सभी को गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो श्रोताओं, हमारी ओर से आप सभी को शुभकामनाएँ आपके रिज़ल्ट के लिए। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में और भी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम यहां रुकेंगे और आपका मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से गीत के साथ। आराधना फिल्म का ये गीत लीजिए श्रोताओं, सुनिए।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना आराधना फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। और इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं और आपसे करेंगे बातचीत। श्रोताओं, आज संडे का दिन है और संडे के दिन हम आपसे और अपने छोटे जो बच्चे हैं, श्रोता हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि संडे का दिन होता है आप लोगों के साथ बातचीत करने का, क्योंकि आप लोग फ्री होते हैं, बच्चे भी जो हैं वो घर पर ही होते हैं, अदरवाइज़ उनके स्कूल्स होते हैं। तो स्कूल में होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बच्चों का भाग लेना ज़रूरी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स का ये मानना होता है कि ये एक्टिविटीज़ बेकार हैं या इनमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है। तो श्रोताओं, हमें थोड़ी सी अपनी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डांस एक्टिविटी, म्यूज़िक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, ड्रामा और आर्ट, ये सभी भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कई बार हम इसे नज़रअंदाज करते हैं और हमें लगता है कि अगर हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने स्कूल जाता है तो वेरी गुड, लेकिन अगर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो हम सोचते हैं बच्चा ना भी जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको बता दें कि पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाती हैं एक्टिविटीज़, क्रिएटिव और पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। श्रोताओं, जब बच्चा स्टेज पर जाता है, खेल में भाग लेता है या किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है, तो वह सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि किसी भी जंग को लड़ना भी सीखता है, किसी भी कंपटीशन में भाग लेना सीखता है। इसलिए हार और जीत तो बोलते हैं ना कि हो जाती है, किसी कई बार हार होगी, कई बार जीत होगी, लेकिन पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी से यही कहेंगे कि अगर आपके बच्चों के स्कूल में भी कोई एक्टिविटी करवाई जाती है तो आप उसे इग्नोर ना करें और बच्चों को ज़रूर उसमें भाग लेने दें। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। लीजिए, सुनिए ये प्यारा सा गीत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।
1: यहाँ क्या देख रहे हो? हाँ, देखो ना,

श्रोताओं, शिल्पा गोयल और सनम पुरी की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पर आपको बता दें कि 91.2 मेगा हर्ट्स पर आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रोताओं कल के दिन की। कल बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में एकदम से एक अलार्म बज पड़ा, शायद वो हो सकता है आप लोगों के फ़ोन पर भी आया होगा, तो उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या था। केंद्र सरकार ने शनिवार को देश की आपातकालीन तैयारियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मोबाइल आधारित आपदा अलर्ट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस महत्वपूर्ण अभ्यास के तहत देश भर के मोबाइल फ़ोन पर एक साथ चेतावनी सायरन बजे, जिसने नागरिकों को थोड़े समय के लिए चौंका दिया। इस प्रणाली को किसी भी संभावित आपदा या आपातकालीन स्थिति के दौरान लोगों तक तत्काल जानकारी पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का लॉन्च किया। इसके तहत देश के कई हिस्सों में 11:45 पर लोगों के मोबाइल पर एक साथ सायरन बजे और स्क्रीन पर हिंदी अंग्रेजी में एक मैसेज था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। ये मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने भेजा था। तो श्रोताओं, ये जो मोबाइल पर आपके सायरन बजा है, ये कल एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है किसी भी आपदा को अलर्ट करने के लिए। तो श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के एक और प्यारे से गीत की ओर।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में रमैया वस्तावैया फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, आज संडे है और संडे का दिन हमारा अपना दिन होता है। हम सभी घर के जितने भी सदस्य हैं उन्हें साथ बैठने का एक अच्छा दिन मिलता है, एक साथ समय बिताने का भी दिन मिलता है। और साथ ही आज मौसम भी वैसा ही है, तो बच्चों की और बड़ों की जो डिमांड्स है वो ज़रूर होंगी कि आज कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे खाकर मज़ा आ जाए। और जब हल्की सी ठंड होती है तब पकौड़ों की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो अपने किचन को बिल्कुल रेडी रखिए और आज संडे है, आज आप इंजॉय कीजिए संडे को और आपके खास जो पसंदीदा पकवान है उन्हें ज़रूर इंजॉय कीजिए। साथ ही श्रोताओं, संडे का दिन एक हमारा ऐसा दिन भी रहता है जिसमें हम पूरे वीक के अपने जो काम रुके पड़े होते हैं उन सभी को करने का सोचते हैं, जिसमें कि खास करके घर की डस्टिंग आ जाती है, साफ़ सफाई आ जाती है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी हमारी महिलाएं श्रोता जो हैं वो काम करती हैं और संडे का एक दिन ऐसा मिलता है उन्हें जब वो अपने घर का सारा काम निपटाना ज़रूरी समझती हैं, और होना भी चाहिए। श्रोताओं, काम कोई भी हो वो करेंगे तभी काम ख़त्म होगा और एक रूटीन जो हमारी बनी रहती है वो भी बनी रहना ज़रूरी है। तो आज के इस दिन को आप लोग अपना काम भी कीजिए और साथ में इंजॉय भी कीजिए। संडे को आप बेकार ना जाने दें, कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकल जाएं, लेकिन हाँ, मौसम को देखते हुए। और साथ ही अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे हैं तो घर में सभी सदस्य इकट्ठे बैठिए, आपका ये वीक कैसा गया उस पर बातचीत कीजिए और अगले आने वाले वीक में आप लोगों के क्या क्या प्लान्स हैं उस पर भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं। जब तक आप लोग सोचते हैं और बातचीत करते हैं तब तक के लिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, सौदागर इस फिल्म का गीत। अब आप सुनने वाले हैं श्रोताओं रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। श्रोताओं, लता मंगेशकर की प्यारी आवाज़ में इस गीत को आप सभी इंजॉय कर रहे हैं।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस समय कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का समय रहता है रोज़ाना सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का और कार्यक्रम में अब समय है छोटे से अंतराल का, यानी कि छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस फिर से लौटेंगे कार्यक्रम में और आपके साथ करेंगे बातचीत। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन, माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी, नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
2: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो चलते हैं, देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं। और प्यारे प्यारे गीतों को हम आप तक पहुंचाते हैं और ख़ास करके आज संडे है और संडे का दिन ऐसा रहता है कि हम अपने काम भी निपटाते हैं और साथ में कहीं ना कहीं रेडियो पे अगर ऐसे गीत सुनने को मिल जाए तो मन लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप म्यूज़िक के साथ प्यार करते हैं, गीतों के साथ प्यार करते हैं, गीत सुनने को मिल जाए और हम काम कर रहे हों तो समय का भी पता नहीं चलता कब निकल जाता है। और जितना भी काम क्यों ना हो वो हम गुनगुनाते मुस्कुराते कर भी लेते हैं। श्रोताओं, थोड़ी सी बात हम ये करेंगे कि बहुत सारे लोग हमारे फ्री रहते हैं घर पर और उन्हें समय निकालना मुश्किल लगता है। ऐसे में हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कहीं बैठकर गपशप मार लें, किसी से मिल लें। अगर कोई ऐसा मिलता है जो आपके साथ अच्छी बात करता है, आपके साथ पॉजिटिव बात करता है, तो आप ज़रूर समय उनके साथ बिताइए। अगर ऐसा नहीं भी मिलता है तो आप घर पर रहकर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं जिनसे आपका दिल लगा रहेगा। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है श्रोताओं, तो ज़रूर रंगों के साथ आप समय बिता सकते हैं। अगर आपको कुछ और बनाने का शौक़ है, वेस्ट जो सामान होता है हमारा, उससे कुछ करने का शौक़ है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आजकल घरों में बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस आते हैं, चाहे वो गत्ते के बने हों चाहे वो प्लास्टिक के बने हों, जिन्हें हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो श्रोताओं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपनी कला को उसके साथ मिलाएं, तो उन जो डिब्बे हैं या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसे आप बहुत सुंदर तरीके से सजा सकते हैं और घर की रौनक बना सकते हैं। कुछ ना कुछ उसमें आप लगा सकते हैं। जैसे आजकल हमारे घरों में कई बार बाहर से दही आता है, दूध आता है, या कई ऐसे कंटेनर्स आते हैं जिन्हें हम यूज़ करने के बाद सोचते हैं कि इसका क्या करें, तो आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं उसे हम किस तरह से सजा सकते हैं, कैसे हम उस पर अपना समय और अपनी मेहनत लगा कर उसे बहुत ही खूबसूरत एक आइटम बना सकते हैं और अपने घर, अपने बगीचे को सजा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम है श्रोताओं जो आप घर में बैठकर कर सकते हैं, जिससे आपका मन भी लगा रहेगा। और जब हम किसी काम को मेहनत से करते हैं, मन से करते हैं, और जब वो पूरा हो जाता है तो सबसे बड़ी खुशी हमें ही मिलती है। तो ज़रूर एक सजेशन है जो आप ज़रूर मानिएगा, और अगर आपको शौक़ है ये सब चीज़ें करने का तो ज़रूर आप कर सकते हैं ये सब काम और अपना मन भी लगाए रख सकते हैं। श्रोताओं, आप कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत राहत फ़तेह अली खान और अजीज़ कौर की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में हम अब बात करेंगे अपने पर्यावरण की, क्योंकि हम अपने मनोरंजन के बारे में बातचीत करते हैं, सभी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो श्रोताओं, पर्यावरण यानी हमारे आसपास की हर चीज़, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर और प्रकृति, इसी से हमारा जीवन संभव भी है। लेकिन श्रोताओं, आज के समय में प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका असर हमारी सेहत और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ रहा है। श्रोताओं, अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें आज से ही छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे कि पेड़ लगाने होंगे, उनकी देखभाल करनी होगी, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना होगा, पानी की बचत करनी होगी, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना होगा। लेकिन श्रोताओं, ये बातें हम करते तो ज़रूर हैं, लेकिन अमल में कितना लाते हैं बात तो वो है। पेड़ हम लगाते हैं, लेकिन क्या हम दोबारा जाकर देखते हैं कि उस बीज को जिसे हमने डाला है या उस पौधे को जिसे हम लगा कर आए हैं, उसे देखभाल की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, या देखें जाकर वो कितना बड़ा हुआ है, चला है, नहीं चल रहा है, या उसकी देखभाल करने की भी ज़रूरत है? नहीं, बहुत कम हम ऐसे होंगे जो एक बार पेड़ लगा कर आ जाते हैं दोबारा उसे देखते भी नहीं हैं। कचरे की बात करें तो कचरा यहाँ वहाँ फेंकने की कई लोगों की आदत होती है। खास करके हम लोग ऐसा सोचते हैं कि रात के अंधेरे में किसी को कुछ पता नहीं चलता, और हम अपने घर का कूड़ा कचरा जो भी है वो किसी बैग में डालकर किसी कोने में रखकर चले जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, आपको बता दें कि घर घर कूड़ा कचरा लेने के लिए हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं, वो आते हैं और हमारा कचरा घर से लेकर जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपने ही अनुसार काम करते हैं और अपना कूड़ा यहाँ वहाँ रख कर आ जाते हैं। आप वो कूड़ा रख कर चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो जानवर हैं वो आते हैं और उसे बिखेर देते हैं, जो कि देखने में बुरा लगता है। तो श्रोताओं, ये छोटी छोटी बातें हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी हम लोग वो गलतियाँ करते हैं कि हमें पता है गलत, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो थोड़ा सा जो भी काम हम करते हैं उसे करने से पहले सोच लें कि हम जो करने जा रहे हैं वो कहीं पर्यावरण को नुकसान तो नहीं देने वाला, हमें या हमारे आने वाली पीढ़ियों को कोई नुकसान तो नहीं करने वाला। ये सब चीज़ें अगर हम सोचेंगे तो शायद हम कहीं अपने पर्यावरण को संभाल सकेंगे, संजो कर रख सकेंगे। तो ये बात हमें याद रखनी होगी कि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की पहचान है। तो अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखिए, वो और पर्यावरण हमारी देखभाल करेगा। तो बातों को अब देते हैं विराम और चलते हैं कार्यक्रम में, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। केदारनाथ फिल्म का ये गीत था श्रोताओं, और देव नेकी की आवाज़ में आपने सुना। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में श्रोताओं, अब समय हमारे पास कम है, यानी कि कार्यक्रम जो है वो 11 बजे तक ही चलता है, आप सभी जानते हैं। तो चलते हैं फिर से कार्यक्रम में, लेते हैं एक खूबसूरत सा गीत और इन्जॉय करते हैं इसे इस कार्यक्रम में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना सुनो ससुर जी फिल्म का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम में देखिए समय जो है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, यानी कि कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है। तो आज हम आपसे यही कहेंगे कि आज का दिन संडे है और आज के दिन को एंजॉय कीजिए। अपने आने वाले समय को किस तरह से हमें बिताना है, कौन से काम करने हैं, इस पर जरूर सोच विचार कीजिए और बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। अब कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। तो श्रोताओं, इस गीत को सुनिए और मुझे यानी कि आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए जाने की अनुमति। बाजरेदा सिट्टा इस फिल्म का गीत ज्योतिका टांगरी और नूर चहल की आवाज़ों में अब आपके रेडियो सेट पर। और इस गीत के साथ ही आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा आपसे लेती है अनुमति जाने की। आप सभी अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। जय हिंद।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू, बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: प्लेट दे उसको, खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी थाली से मत खिलाओ, उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता के उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार,
5: मैं संजय वाघमारे।
4: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
4: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
4: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
5: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
4: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
4: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
5: तो लगा लो ताला,
4: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
4: और अगर कोई OTP मांगे
5: बरोबर
4: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
5: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
4: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
5: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
7: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू, कुछ भी कहो मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
8: ठीक तो है,
7: का ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
8: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
7: क्या है?
8: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
7: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
8: झूठ बोलती है,
7: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है, अच्छी तो बनी है, झूठ बोलता है। आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका, आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप के पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल रही है तू। बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लो प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी थाली से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता गई। उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में लगो थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
4: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे बटन वाला।
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
4: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे
4: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
4: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
5: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता।
4: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
7: काकू कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
8: ठीक तो है।
7: का ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
8: कह तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
7: क्या है?
8: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
7: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
8: झूठ बोलती है।
7: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है।
9: झूठ बोलता है। आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी।
7: मजा आ गया। आहा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज एक बार फिर से मैं लौट आई हूं अपनी सुपर हिट पुराने गानों की प्लेलिस्ट के साथ और उनके पीछे छुपी हुई कहानियों के साथ। आज की मेरी प्लेलिस्ट उन गानों के नाम है जो आज भी 50 साल के बाद भी उतने ही खूबसूरत हैं, उतने ही जवां हैं और हमें जुबानी याद हैं। उस एरा के नाम है आज का ये शो जब फिल्में रंगों की मोहताज नहीं थी। उस एरा का थ्रिल और एक्साइटमेंट आज भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं बात कर रही हूं द ब्लैक एंड व्हाइट एरा की, जब दिलीप साहब, देवानंद साहब, राज कपूर जी, शम्मी कपूर जी, मधुबाला, साधना, मीना कुमारी जी जैसे सितारों ने अपना जादू बिखेरा था बड़े पर्दे पर। जब ओपी नैयर, मदन मोहन, एसटी बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री को नई पहचान दी। ये वो वक्त था जब गाने वन गो में रिकॉर्ड किए जाते थे और हम जब भी गोल्डन एरा के गानों की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई गाना दिमाग में अगर आता है तो वो है लता दीदी की आवाज में गाना लग जा गले। वैसे क्या आप जानते हैं ये गाना फिल्म के डायरेक्टर ने पहली बार सुनकर रिजेक्ट कर दिया था। म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी ने काफी कन्विंस किया और उसके बाद इस गाने को रिकॉर्ड किया गया और ये गाना इतना पॉपुलर है कि 50 साल के बाद भी आज के सिंगर्स इस गाने के कवर बना रहे हैं और काफी हिट भी हो रहे हैं। वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम टुडेज प्लेलिस्ट, लग जा गले, लता जी की आवाज में।

श्री 420 फिल्म से था ये गाना, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूँ रुचि आपके साथ। और आज ब्लैक एंड वाइट इरा के, गोल्डन इरा के कुछ गाने आप तक लेकर के आई हूँ मैं। वैसे उस जमाने में ज़्यादातर गाने रोमांटिक और मेलोडियस हुआ करते थे, और सही मायने में उस समय अगर कोई एक सिंगर थी जो कि छाई हुई थी, जो इंडस्ट्री में रूल कर रही थी, तो वो थी लता मंगेशकर जी। वैसे जब लता जी मुंबई आई थी तो उन्होंने अपने संगीत की जो ट्रेनिंग है वो उनके गुरु विनायक जी के अंडर शुरू की थी। लेकिन 1948 में विनायक जी नहीं रहे, जिसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने उन्हें मेंटोर किया एज अ सिंगर। उस समय उन्होंने लता जी की मुलाकात करवाई थी प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी जी से, जो कि 1948 की फिल्म शहीद बना रहे थे। लेकिन तब शशाधर साहब ने लता जी की आवाज को बहुत पतली कह करके रिजेक्ट कर दिया था। इस बात से हैदर जी बहुत खफा हो गए थे कि उन्होंने इस आवाज को परखा और तराशा और किसी को ये आवाज पसंद नहीं आई, तो उनके ईगो पे बहुत ठेस पहुंची थी। उन्होंने कह दिया था, लता मंगेशकर जी से कहा था कि एक समय आएगा जब यही सारे डायरेक्टर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स तुम्हारे कदमों में गिरे हुए मिलेंगे तुम्हें, और तुमसे भीख मांग के कहेंगे कि मेरी मूवी में गाना गा दो। और लो, ये बात सच भी हुई। वो हैदर जी ही थे जिन्होंने लता जी को अपना पहला ब्रेक दिया था विद द सॉन्ग दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं गाना छोड़ा। मूवी थी मजबूर, जो कि 1948 में आई थी, और इनका बिग ब्रेक बन गया था ये अपने करियर में। लता जी ने खुद भी ये डिक्लेयर किया था कि अगर उनके कोई गॉड फादर हैं या थे तो वो गुलाम हैदर जी ही थे। वो पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने उनमें भरोसा दिखाया। तो चलिए सुनते हैं लता जी का ही अगला गाना, वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। अजीब दास्तां।

किशोर दा और आशा जी की आवाज में ये गाना सुना आपने वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर पेइंग गेस्ट फिल्म से। आई होप आपको ये गाने ब्लैक एंड व्हाइट एरा के ये गाने बड़े पसंद आ रहे हो। वैसे ये गाने मुझे बहुत पसंद है और अगर गोल्डन एरा की मेलोडी क्वीन लता दीदी की बात करें तो वो गोल्डन वॉइस ऑफ सिल्वर स्क्रीन तो थी ही, लेकिन अगर एक और एक ऐसी आवाज थी जो उस समय छाई हुई थी तो वो थी मोहम्मद रफी साहब की। क्या आप जानते हैं रफी साहब को घर पर फीको बुलाया जाता था और उनका म्यूजिक वर्ल्ड में और सिंगिंग में इंटरेस्ट तब आया जब वो किसी और को इमिटेट करते हुए पकड़े गए थे। एक्चुअली उनके गली में एक फकीर था जो कि बार बार आता था और कुछ तो बोल करके कुछ लोग या कुछ दोहे बोलता रहता था और वो सुन सुन करके मोहम्मद रफ़ी साहब को भी आदत हो गई थी उसकी कॉपी करने की, और वो कॉपी करते थे तो खुद उनका इंटरेस्ट आया म्यूज़िक में और लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया कि ये तो बच्चा गा सकता है, और तब जा कर के उन्होंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। वैसे रफ़ी साहब बॉक्सिंग के भी बहुत शौकीन थे और बॉक्सिंग किंग उस समय के मोहम्मद अली वो शिकागो गए थे टूर के लिए, तो रफ़ी साहब ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की अपने परिवार वालों से साथ ही टूर के ऑर्गेनाइजर्स से कि वो उन्हें भी शिकागो लेकर के जाएं और मोहम्मद अली जी से मिलवाएं। वैसे तो मोहम्मद अली किसी से मिला नहीं करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इंडिया से एक इतना बड़ा कलाकार आया है शिकागो उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने खुद समय निकाला और मोहम्मद रफ़ी जी से मिले थे। और एक ज़माने में रफ़ी जी ने कहा था कि द ओनली सेलिब्रिटी जो वो मानते हैं कि एक सेलिब्रिटी है तो वो सिर्फ मोहम्मद अली हैं। चलिए, खुद को सेलिब्रिटी नहीं मानते थे मोहम्मद रफ़ी साहब, ये बहुत ही बड़ी बात है। सुनते हैं रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में गाना नया दौर से उड़े जब जब जुल्फें तेरी, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। गोल्डन एरा की काफी ऐसी फिल्म्स थी जिन्हें आज भी बहुत ही बढ़िया माना जाता है, जिनमें से गुरुदत्त साहब की प्यासा और कागज के फूल, राज कपूर साहब की आवाज और श्री 420, महबूब खान साहब की मदर इंडिया और के आसिफ जी की मुगले आजम रही है। ग्रेटेस्ट फिल्म्स के ग्लोबल लिस्ट में रेगुलर फीचर होने के बाद भी ईच वन ऑफ दीज क्लासिक्स इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड सिनेमा इन द सबकॉन्टिनेंट फॉर डेकेड्स टू फॉलो। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस जमाने में फिल्म को या तो कमर्शियल सक्सेस मिलती थी या क्रिटिकली लोगों को फिल्म अच्छी लगती थी। एक ऐसी फिल्म बना पाना जो कि लोगों को भी अच्छी लगे और पैसे भी खूब कमाए, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर जाकर मुगले आजम और प्यासा जैसी फिल्में आईं जो कि कमर्शियली भी हिट हुई और पैसे भी इन्होंने खूब कमाए। पर उस दौरान की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली हिंदी फिल्म अगर कोई थी तो वो थी महबूब खान साहब की मदर इंडिया। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इस फिल्म ने। पर फिलहाल सुनते हैं गाना हम उस फिल्म से जिसमें नरगिस और मधुबाला जी को माला सिन्हा और वहीदा रहमान जी ने रिप्लेस किया था। मैं बात कर रही हूँ फिल्म प्यासा की। इस फिल्म में पहले नरगिस और मधुबाला जी लीड रोल निभाने वाले थे, लेकिन दोनों एक्ट्रेसेस सेम डेट पे अवेलेबल ही नहीं हो रहे थे, तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बड़ा ही चिढ़ गए और उन्होंने फिर दोनों को ही कह दिया कि मत करो ये फिल्म। और गुरुदत्त जी ने खास कहा कि माला जी और वहीदा जी को ये रोल दिया जाए, एंड दैट्स हाउ हमने इन दोनों को देखा इस फिल्म में। चलिए सुनते हैं इस फिल्म का गाना हम आपकी आंखों में, रफी साहब और गीता दत्त जी की आवाज़ में।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं उस जमाने के बारे में जब लोगों का थिएटर्स तक जाना और फिल्में देखना अच्छा नहीं माना जाता था। मैं बात कर रही हूं द ब्लैक एंड व्हाइट एरा के बारे में। जब फिल्में देखना ही अच्छा नहीं माना जाता था तो सोचिए फिल्मों में काम करना कितना बुरा माना जाता होगा। लेकिन उस जमाने में भी ऐसी कई सारी एक्ट्रेसेस थीं जिन्होंने इन बंदिशों को तोड़ा और बाहर आईं और बहुत ही खूब सिनेमा हमें दिया। वैसे अगर कोई दो ऐसे उस जमाने के स्टार्स थे, यू नो ब्लैक एंड व्हाइट एरा के, गोल्डन एरा के स्टार्स थे जिन्हें ग्लोबली पसंद किया गया, जो कि इंटरनेशनल स्टार्स बन गए, तो वो थे राज कपूर साहब और राजेश खन्ना जी। राज कपूर साहब तो इनफैक्ट वो पहले ऐसे इंडियन स्टार थे जिनकी फिल्में बाकी लैंग्वेजेस में भी डब की जाने लगी। इंडियन लैंग्वेजेस ही नहीं, यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी इनकी फिल्मों को डब किया जाने लगा और काफी फैन फॉलोइंग थी इनकी। साथ ही राजेश खन्ना जी वो पहले ऐसे एक्टर बने जिनकी फिल्में जो थी वो अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका में भी रिलीज हुई और लोग थिएटर्स तक गए जाकर के एक इंडियन एक्टर की फिल्म देखने के लिए, क्योंकि राजेश खन्ना जी का तो स्टार्डम ही कुछ ऐसा था। तो उस जमाने के बेहतरीन सितारों के नाम आज का ये शो था। और राजेश खन्ना जी की बात हो रही है तो उन्हीं का अगला गाना आपको सुनाते हैं। राजेश खन्ना जी और आरडी बर्मन जी की साथ में पहली फिल्म थी, लता जी की आवाज में ये गाना है, आजा पिया तो है प्यार दू, बहारों के सपने फिल्म से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: आजा पिया

0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना के पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका, आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप के पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
2: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल रही है तू। बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
3: लो प्लेट दे उसको। खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए।
0: ले बेटा
4: अपनी थाली से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता गए। उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में लगो थप्पड़ लगाऊंगा।
5: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
6: मैं प्रकाश तांडेल।
7: मैं प्रज्ञा देसाई।
6: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
7: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
6: मकान पर, दुकान पर,
7: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
5: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
6: फोन पे बटन वाला,
7: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
6: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
5: तो लगा लो ताला,
6: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
7: तब,
6: और अगर कोई OTP मांगे
5: बरोबर
6: लगाइए
7: मुंह पे ताला।
5: याद रखिए,
7: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
6: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
5: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
7: तो लगाओ मुंह पे ताला।
8: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
9: ठीक तो है।
8: का ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
9: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
8: क्या है?
9: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
8: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
9: झूठ बोलती है।
8: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है। झूठ बोलता है। आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा।

दोस्तों 91.2 MHz रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला तो सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल रहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

0: सब एक ही जगह रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: बाबा आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका, 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप के पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी,
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू, बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लो प्लेट दे उसको, खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है, हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं।

0: चलाए। ले बेटा
1: अपनी दाढ़ी से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है चुराए, और ज्यादा लाड़ जता गई उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने मतलब 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
2: नमस्कार,
3: मैं संजय वाघमारे।
2: मैं प्रकाश तांडेल।
4: मैं प्रज्ञा देसाई।
2: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
4: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
2: मकान पर, दुकान पर,
4: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
3: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
2: फोन पे बटन वाला,
4: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
2: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
3: तो लगा लो ताला,
2: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
4: तब,
2: और अगर कोई OTP मांगे
3: बरोबर
2: लगाइए
4: मुंह पे ताला।
3: याद रखिए,
4: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
2: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
3: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
4: तो लगाओ मुंह पे ताला।
5: हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
6: ठीक तो है।
5: का ठीक है, न चीनी है न दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
6: कह तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
5: क्या है?
6: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
5: आहा, बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा,
6: झूठ बोलती है।
5: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है। झूठ बोलते, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा।

0: नमस्ते नमस्कार 91.2 MHz पर ए है दोहा सारियां दा अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेसी सोगी जेड़ा कार्यक्रम दा नाव है सभी तोहां तक पहुँचाने दी ना सभी तो हुंदा मनपसंद कार्यक्रम है ना माटी दी महक मिट्टी दी खुशबू हमेशा अहंजो अपनी धरती कन्ने जोड़ी करी रख दी है ताशो तो माटी दी मह कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर है से तुहां तक कहां प्रस्तुत करी ते है कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम कन्ने जुड़ी सकदे जुड़ने वास्ते पहले जिहड़ा नंबर है से तुहां तक पहुँचाइंदे न क्योंकि नंबर तुहां तक पुज्जेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे तो नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा तहां दे जेड़ा पहले श्रोता है ना सहां कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुम्हारा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना? मौसम किस प्रकार है? धूप लगी पई है जी। ताजी धर्मशाला दी
1: बस ठीक है मैडम जी, बस रोटी खाधी से होना
0: जी। तो ठंड कितनी की हुई है उस साइड?
1: बरखा का ठीक ही हुई है क्या का शहर का
0: कने ठंड भी ठीक ही हुई है ना जी?
1: और जल्दी दोबारा जाके कल वाई थी
0: जी जी, मौसम दा कोई भरोसा नहीं है ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, बाय क्या हो गर्मी वाला को पता नहीं लगा
0: जी। इस बार तो गर्मी बड़ी कम है ना जी?
1: हाँ जी।
0: तो विजय जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: आज तो हम रुण झुनवा सुनाई दिया
0: जी। अच्छा, रुण झुनवा सुनना है तुम्हा?
1: हाँ जी हाँ
0: जी जरूर। तो हम जेड़ा फरमाइश है से तुम्हा तक पहुँचा दे जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुम्हारा।
1: ठीक है भाई
0: जी। ए है तुम्हा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो अशो तो अज कने दिने दी यहाँ गल करिए तो अज बेहतर खास दिन है हाँ वास्ते संडे का ये दिन है 3 मई 2026 दी अहां गल करिए संडे यानी कि फंडे वाला दिन थोड़ा दिया मौज मस्ती भरा ये दिन है कने तुहां इस दिन जो जरूर जेड़ा इस इंजॉय करा दे होने न अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर दे न गल बात। हेलो
2: हेलो, नमस्ते सती जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: हाँ जी ठीक ठाक, तुम बोला
0: जी? हाँ भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हम दा ना क्या है जी?
2: ना जी, तुम रोड के ते बोला दा रमेश मेरा ना
0: जी। रमेश जी, क्या काम कार तो हाँ लगाया, क्या करा दे?
2: आज कुछ नहीं करा दे, टाइम पे लीजिए बस, मैं बरखा पे ये कर मैं ना कर नहीं आ गए
0: जी। अच्छा जी, मौसम दा तो कोई भरोसा नहीं है कने बारिश भी जड़ा है से ठीक ठाक ही होई ना जी? क्योंकि अगर हां फिर भी अगर कनक बड़ी भी दिंदे तो कोई फायदा तो हां जो होना नहीं है क्योंकि से सिन्नी फिर भी थ्रेसर च तो चलनी नहीं ना जी। रमेश जी, आज तुहा कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
2: आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है ना
0: जी जी,
2: आज गाना सारा मेरे खेलने आओ तेरी पढ़ाई तेरा करना नहीं आओ
0: जी। ता गुंजन परिवार दी तरफ ते उस जो जन्मदिन दियां बढ़िया सारियां मुबारका उन जी।
2: तो हाँ जी जी
0: जी जी जी, ता जरूर एक गीत मेरे खेलने आओ तो हाँ तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तो हाँ दा
2: जी।
0: दर्शकों चल दे न गीत दी और शुरुआत कर दे न अपने कार्यक्रम दी इस प्यारे दी फरमाइश करने तो हाँ सारे भी इंजॉय करा कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ये प्यारा दया गीत प्यारी दई शुरुआत कने इस गीत की फरमाइश शाह जो आई हुए विजय जी की कने से रहने वाले न धर्मशाला ते तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाया कने फिर ही तहाँ वापिस आई हूँ अपनी गलबात उपर तो सारे भी माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी सकते कने आज जेड़ा संडे का दिन है उसको जरूर तुहां फंडे दे रूप च बना दे होने न क्योंकि अजकना जिहड़ा दिन है या अजकना जिहड़ा रविवार का दिन है सहां वास्ते बेहतर खास होंदा है क्योंकि यहाँ जो हमेशा अपने कन्ने अपनी फैमिली जो किस प्रकार समय जिहड़ा ऐसे दे सकदे कन्ने छुट्टी वाला दिन है बच्चों जो भी छुट्टी होंदी कन्ने बच्चे भी अपनी जिहड़ा फुल ऑन मस्ती जिहड़ा ऐसे करदे न तो मस्ती करना तो हर टाइम अहाँ वास्ते बनता है कने तुहां सारे भी अपना रेडियो सेट ऑन करी लिया अगर ऑन नहीं कित्या कने ऑन कित्या तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम च तुहां जुड़िया जुड़ने वास्ते जिहड़ा अहां दा नंबर है से फिर ते तुहां तक पहुँचाइंदे न क्योंकि नंबर तुहां तक पुज्जेगा ताई तो तुहां ते इस नंबर पर कॉल या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा तो शो तो फिर यहाँ थोड़ा दिया अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न क्योंकि गलबात आँदी हमेशा चलियो रहती पर सफ़र जो सुहाना बनाना है तो थोड़ा दिया गीत संगीत अपनी गलबात करने जोड़ना तो बनता है सुन दे अगली फरमाइश तुह सारी भी इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे ही सुनिया एक गीत, मेरिया खेलणुआ तेरिया बधाइयां तेरे कन्याइयां। इस गीत की फरमाइश हाँ जो आई हुए तंगलोटी ते कने तिना दा ना वे रमेश जी, तिना तक हाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय कीता। हर गीत की अपनी जिहड़ा खासियत है से जरूर होंदी है, तो गीत संगीत भी आहंदी

जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करते न। तो श्रोता प्रकृति की अहां गल करिए, प्रकृति का नियम हर कुसी जो पता है कि जिहड़ा अहां बंडदे न सही अहां जो बेहिसाब मिलता है, चाहे से इज्जत है, चाहे से दौलत है, चाहे से नफरत है, चाहे से मोहब्बत है। क्योंकि अगर अहां कुसी ने अच्छे ने गल कर देना, अच्छा व्यवहार अहां कुसी कन्ने रख देना, तो अहां जो भी अच्छा ही व्यवहार जड़े से मिलता है। कने अगर अहां गुस्सा कर देना या अच्छे ने गल नहीं कर देना, तो अहां जो भी अगे ते सही मिलता है। तो प्रकृति दे नियम कन्ने चलना भी अहां वास्ते जरूरी है। पर अहां दे हमेशा पेरेंट्स की गल करिए या अपनी फैमिली की गल करिए, बच्चे जो अच्छी शिक्षा जड़े से ग्रहण करवाते हैं कि बड़िया की इज्जत करनी है, बड़िया ने प्यार भावना जड़े से रखनी है, चाहे बड़े न चाहे छोटे न। क्योंकि अगर अहां छोटिया की गल करिए, तो कई बार होंगे ना कि अहां हमेशा ये सोचते हैं कि ये छोटे न, इन्हों की क्या इज्जत करनी। पर छोटे भी बड़ा कुछ सिखाई करी चली आते, से निर्भर करता अहां किस प्रकार अपनी जड़ा सोच है से रखते न। सोचने वास्ते तो छोटा दिया लफ्ज है कि नहीं, इज्जत देने ने इज्जत मिलती है, कने प्यार देने ने प्यार मिलता है। अच्छा व्यवहार अगर अहां रखते न, ताई अहां अपनी जिंदगी जो बेहतर बनाई पाते न। एक फैमिली है, फैमिली च क्या ज़्यादा ज़रूरी रखता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्यार भावना समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही दुए की जड़ा गल है उस जो समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, से तो हम सारे जो ही पता है। अगर अहां अपने जड़ा शब्द हैं, अगर बुरे शब्द अहां इस्तेमाल कर देना, तो कुछ ना कुछ, चाहे से फैमिली है चाहे कोई भी रिश्ता है, तिह च दरार जड़े से ज़रूर आई आती है। तो अच्छा विचार, अच्छी जड़ा सोच है से रखना अहां वास्ते ज़रूरी है। अच्छे कर्म, अगर अहां अच्छे कर्म कर देना, तो कर्मा का जड़ा हिसाब है से अहां जो ज़रूर मिलता है। तो हमेशा अच्छे कर्म करा, अच्छी जड़ा सोच है से अपने अंदर रखा। तो श्रोताओ फिर यहाँ थोड़ा दिया आगे बढ़ देना, क्योंकि आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। कने मौसम जड़े से कुछ ना कुछ अपनी करवट जड़े से ज़रूर बदला दे। 3 मई 2026 की यहाँ गल करिए, तो मौसम जड़े से बड़ा ही सुहावना बने है। कने बारिश की यहाँ गल करिए, तो हल्की हल्की बारिश होने की जड़ा संभावना है। वैसे भी बरखा जड़े से हो ही है, कने इस टाइम जड़ा बरखा से रुकी हो, तो हाँ अपने जड़ा रुके काम मन से ज़रूर कर सकते, क्योंकि मौसम के अनुसार चलना हाँ वास्ते बेहतर ज़रूरी है। दिने का अधिकतम तापमान की यहाँ गल करिए, तो 16 डिग्री जड़ा रहने वाला है। कने रात का जड़ा न्यूनतम तापमान है से वह 9 डिग्री के आसपास रहने वाला है। तो श्रोताओ शाम के समय जड़ा सा गर्ज कने हल्की बारिश होने की जड़ा संभावना है, सभी जड़ा मौसम विभाग वाले ने से जता देन। तो मौसम के अनुसार चलना भी जरूरी है। कने थोड़ा दिया हाँ फ्री ते रौनक वाला जड़ा माहौल है अपने कार्यक्रम च, रौनक जड़ा से जरूर लगा देन। तो हाँ सारे भी इन्हें ही सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तक्षो तो तुम सारे सुनिया ये गीत ए भजन। इस भजन की फरमाइश अहाँ जो आई हुए व्हाट्सएप के थ्रू तिना का ना भी तुह तक पहुँचाते हैं। तिना का ना वे प्रकाश चंद कने से रहने वाले न सुके बाग ते तिना तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी ये भजन इंजॉय किया। तो श्रोताओ भजन दे बाद अहाँ फिर ते अपनी जेड़ा गलबात है से तुह तक पहुँचाते हैं। संडे वाला दिन है, संडे वाली छुट्टी है, जड़ा बच्चे न सभी खूब जड़ा अपनी छुट्टी है से इंजॉय करा दे होने न। मौसम भी थोड़ा सुहावना है तो आंदा जड़ा मन ने से बड़ा कुछ थोड़ा दिया बोलता है कि संडे दी छुट्टी है, कुछ नया पकवान जड़े से जरूर अहाँ जो मिलियाँ यहाँ बनान ता बेहतर खास जड़ा है संडे बनी आंदा। थोड़ा दिया अपनी फैमिली कन्ने समय जड़ा बिताना है से अहाँ जो मिलता है। समय के अनुसार अगर अहाँ सारे ही काम करते न या अपनी फैमिली जो समय देंदे न कने समय की अहमियत समझते न तो अहाँ हर काम करी पाते न, क्योंकि अपने दा साथ होना भी ज़्यादा जरूरी है। अपने दा एहसास ज़्यादातर अहाँ अजकने दौर की अहाँ गल करिए तो अपना ज़्यादा समय जड़े से अहाँ हर टाइम सोशल मीडिया पर जड़े से लगाते हैं। सोशल मीडिया ते भी बाहर दुनिया है, आज उस सोशल मीडिया जो थोड़ा दिया रेस्ट दिया कने अपनी फैमिली जो थोड़ा दिया जड़ा समय है से जरूर दिया। अपने जड़ा दादा दादी हैं या उन्हें जो भी समय दे सकते उन्हें जड़ा कहानियां ना सभी तुह सुनी सकते, क्योंकि उन्हें कहानियों च ही अह जो जिड़ा कोई भी गल है उदा सार जड़े से मिली आंदा है, चाहे से गीत संगीत हैं चाहे से कहानियां हैं। कहानियां भी आज जो बड़ा कुछ सिखाई करी जांदियां हैं। अपने दा प्यार कने जिड़ा कहानियां हैं से हाँ जो हमेशा एक ही दूए ने जोड़ी करी रख दिया हैं। बचपन दी अहां गल करिए, बचपन दा जिड़ा दौर है से सबसे प्यारा दौर है। न किसी चीज़ की टेंशन, ना किसी चीज़ का तनाव, बिना फिकर कित अहाँ अपना जिड़ा काम है अपनी जिड़ा मौज मस्ती है से करते न। जिन्हें यहाँ बचपन से बाहर निकलते न तो कुथी ना कुथी अहाँ जो से जिड़ा बचपन है से फिर ते याद आई आंदा है। बचपन दियाँ यादा जरूर संजोई करी रखा, क्योंकि अजकने जिड़ा दौर की अहाँ गल करा दे तो ज़्यादातर बच्चा अपना जिड़ा समय मोबाइल फोन च देदा, अपना जिड़ा यही सोच करी चला दा कि अहाँ मोबाइल फोन है तो सब कुछ अहाँ ले। पर कुथी ना कुथी अहाँ अपने रिश्तिया जो भुला दे या अपनी फैमिली जो जिड़ा समय है से नहीं दे पा दे या मोबाइल जिड़े से जिसकी अहमियत अहाँ दे जीवन च ज़्यादा हुई हो। बेशक मोबाइल फोन ने अहाँ दी हर सुख सुविधा जिड़े से पूरी करी थी हो, पर कुथी ना कुथी अहाँ जो अपने ते थोड़ा दिया दूर जड़े से करी दिया तो मोबाइल फोन जो साइड रखा कने अपने जो समय जड़े से जरूर दिया। कने इस टाइम तो सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने समय की अहाँ गल की तो समय जड़े कार्यक्रम च हुई है 2:28। समय भी जड़ा अपनी रफ्तार लेकर ही चलिया हों तो समय के अनुसार अहाँ जो भी चलना पौधा तो फिर ते थोड़ा दिया समय के अनुसार अहाँ चलते न, क्योंकि चलना तो बनता है ना। थोड़ा दिया समय के अनुसार अगर अहाँ चलते न तो ही अहाँ तुहदिया जड़ा प्यारिया प्यारिया फरमाइशा न से तुह तक पहुँचाई पाँगे। चलते न सुनते न अगली फरमाइश तुह सारे ही इस प्यारी दिया फरमाइशा जो भी इंजॉय करा कने अपनी जड़ा अपनी जड़ा छुट्टी है उस जो भी इंजॉय करा। ताशो तो इस गीत जो जरूर जड़ा इंजॉय तुह करना है कने इस कार्यक्रम च तुह सारे भी यहाँ कने जुड़ी सकते कने अपनी जड़ा प्यारिया प्यारिया फरमाइशा न से जरूर सुनी सकते।

0: श्रोताओं तो हाँ सारे ही सुनिया ये मस्ती भरा गीत कद्दू बनिया मज़ेदार था। श्रोताओं कद्दू तो हमेशा मज़ेदार ही बनता अगर अहाँ थोड़ा दिया तीस नमक मिर्च मसाला जड़े से पाई दे ना तो कद्दू का जड़ा टेस्ट है से थोड़ा दिया ज़्यादा बढ़िया आंदा है। तो इस गीत की फरमाइश अहाँ जो आई हुए धर्मशाला ते कने तिना दा नाम है वंदना जी तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय किया। फिर ते अहाँ अपनी जेड़ा गल बात है ते पर वापिस आई हो न कने अहाँ दे अगले जेड़ा श्रोता न से जुड़ चुके हो न कर दें तिना कने गल बात। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। हेलो जी तो हाँ अपनी रेडियो सेट दी आवाज कम करी लेंगे जी। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी
0: जी तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हाँ दा ना किया जी।
1: मैं रूही धर्मशाला
0: जी रूही जी आज ता छुट्टी एंजॉय करा देना जी तो हाँ
1: हाँ जी
0: किस प्रकार अपनी संडे दी जिड़ा छुट्टी है से एंजॉय करा दे
1: सोई ना
0: जी जी सोई करी बस नींदर पूरी करा दे आज तो हाँ
1: हाँ जी
0: जी ता और बाकी कुछ नहीं किता आज
1: आज
0: जी। अच्छा आज तो वैसे भी मौसम थोड़ा बारिश आ रहा है ता मन कर दा कि बस बिस्तरा को यहाँ जो दे दिए कने बस लेटे रहे ना जी जी जी ता रूही जी और नोहिता जी धर्मशाला दी
1: बारिश लगी
0: जी लगी है बरखा
1: बदल है
0: जी। अच्छा बदल है
1: जी
0: ता आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: रस्सो बच्चो लोको
0: असा परदेसी बंदे ना जी।
1: हाँ जी
0: जी जरूर है गीत तो हाँ तक पहुंचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
1: थोंदा भी धन्यवाद
0: जी। अहाँ बोला देना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे भी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने अगले जरा श्रोता न तिना कने भी कर देन गल बात। हेलो
2: नमस्कार जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
2: हाँ जी ठीक है
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहां दा ना के है जी।
2: सुभाष
0: जी सुभाष जी कुत्थों ते बोला दे
2: जी
0: जी क्या हाल चाल है नियो लाले दे
2: जी सब थोड़े साथ
0: जी जी
2: जी
0: तो

0: आवाज कुछ क्लियर नहीं हो रही जी। जी जी जी जी तो सुभाष जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी। जी कुंडिया गीत
1: अपनी फरमाइशा जी।
0: जी अच्छा, मेरी पसंदीदा कोई भी गीत सुनना है तो हाँ
1: जी
0: जरूर, तो हुंदी जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तो हुंदा। जी जी ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। चलते न थोड़ा जहा अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न, कने अगला जेड़ा गीत है से तुह तक पहुँचाते न।

माटी दी मह कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देन आपने रेडियो दो शशि कहने तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश। इस भजन दी फरमाइश अह जो आई हुए सुनील कुमार जी दी कने से रहने वाले न कोठिया जलोड़ ते कने फरमाइश अह तक पहुँची हुए व्हाट्सएप दे माध्यम ने। तो अपनी जेड़ा गलबात है फिर ते थोड़ा दिया गलबात उपर अहाँ वापिस आते न तो श्रोतो संडे दी अहाँ गल करिए छुट्टी दी अहाँ गल करिए तो छुट्टी जड़ा है तो हाँ जरूर इंजॉय करा दें न चाहे से तो हाँ कुछ मस्ती भरे पल याद करा दें न क्योंकि सुकून जड़ा है से थोड़ा दे अहाँ जो मिलता है जालू अहाँ की छुट्टी जड़ा है से आती है सारे अहाँ काम छड़ी करी। वैसे तो छुट्टी वाले दिन अहाँ भी सोचा होंगे कि घरे दे जड़ा काम मन या बारा दे काम मन से करने न पर संडे वाले दिन है सिर्फ अहाँ घरे दे काम ही जड़ा करी सकते कने कुछ जड़ा समय है से अपने वास्ते निकाली सकते कने अपनी जड़ा पूरे हफ्ते की जड़ा थकान है उसको अहाँ मिटाई सकते कने थोड़ी दे जड़ा समय ऐसे अपने बचपन जो बचपन दियाँ जेड़ा याद है न उन्हें जो अहाँ याद करी सकते कने अपने बचपन का जेड़ा इंतजार है से हर कुसी जो होंदा कि अहाँ अपना बचपन जेड़ा है से किस प्रकार बीताया किस प्रकार अहाँ दियाँ जेड़ा याद है न से अहाँ कने जुड़ी आदियाँ न तो हर चीज़ अहाँ वास्ते जरूरी होंगी कने थोड़ा दिया समय अपनी प्रकृति कने बिताना भी अहाँ वास्ते जरूरी है। जलो अहाँ जड़ा फूल हैं तिना जो दिखते न तो जरूर आंदे चेहरे पर समाइल जड़ा है से आई आती है प्रकृति दी जड़ा बड़े छैल जड़ा कुदरत दे नियम या कुदरत दा जड़ा सौंदर्य है से बड़ा ही प्यारा है तेदी और अहाँ अपनी नज़र अगर लगाते न तो अहाँ जो शांति जड़ा से मिलती है कने सुकून भरे जड़ा पर लंस से अहाँ जो मिलते न तशो तो संडे की छुट्टी जरूर इंजॉय करा कने अपना जेड़ा काम में सभी करा क्योंकि काम करना भी थोड़ा देर जरूरी है पर अपनी सेहत का ख्याल रखी करी सेहत पहले फिर आहां दे बाकी काम अहाँ वास्ते जरूरी है। चलते न फिर ते अगली जेड़ा फरमाइश है से अहाँ रूही जी तक पहुँचानी है से रहने वाले न धर्मशाला ते तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है इसे तो तक रहिंदा है दो ते तीन बजे तक। अज कने दिने दी अहां गल करिए तां 3 मई 2026 का ये संडे का दिन रविवार का जिहड़ा दिन है तो हाँ जरूर इंजॉय करा दे उन्हें न हफ्ते की भाग दौड़ भरी जिंदगी ते थोड़ा दे अहां जो जिहड़ा छुट्टी वाला दिन है थोड़ा समय जिहड़ा इसे अहां जो मिलता है। सारे जो अहां ये नहीं बोली सकते कि संडे जो ही छुट्टी होंदी है बाकी कुथी ना कुथी जिहड़ा कई दा अपना जिहड़ा वीकली ऑफ है से अगे पिछे होंदा तां उसी प्रकार जिहड़ा संडे जो बच्चों की अहां गल करिए तां उन्हां जो भी थोड़ा देआ छुट्टी दा इंतज़ार रहिंदा कि कालू दी अहां दी छुट्टी होंदी है कने कालू दी अहां अपना जिहड़ा छुट्टी वाला दिन है से इंजॉय करदे न या थोड़ा देआ घूमना फिरना भी हर कुसी जो पसंद होंदा। वैसे घूमना फिरना भी अहां वास्ते ज़रूरी है थोड़ा देआ कमे जो ब्रेक दे करी अगर अहां अपने वास्ते समय निकाल दे ना तो बड़ी अच्छी गल है। थोड़ा देआ अपने मन जो आराम देना है कने थोड़ा देआ अपने शरीर जो भी आराम जिहड़ा है से जरूर देना है कने पुरानियां जिहड़ा गल्लां न तिना जो अगर अहां ताज़ा कर दे ना तो कुथी ना कुथी अहां दे चेहरे पर जिहड़ा स्माइल है से जरूर झलकदी है। चाहे तो हाँ इस टाइम भी अपनियां जिहड़ा पुरानियां यादां न तिना जो ताज़ा करा देंगे तो जरूर चेहरे पर स्माइल झलकदी है कि नहीं अहां भी अपने बचपन च ये करते थे वो करते थे कि कोई ना कोई शरारत जिहड़ा से अहां जो याद जिहड़ा से रहिंदी है तो याद करना बनता है कने अहां दा जिहड़ा काम है सेवे कि अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचानी है क्योंकि समय जिहड़ा से अहां बड़ा थोड़ा दे है तो चल दे न अगली जिहड़ा फरमाइश है से सुन दे न दशो तो ये गीत अहां सुभाष जी तक पहुँचा देने कने सरैने वाले न योल ते

2.2 मेगाहर्ट्स पर ए है तुहां सारे अंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो तो शशि करने। ताशो तो आज के कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से थुई समाप्त होंदे ता तुहां सारे भी अपनी रेडियो तो शशि जो दिया अनुमति कने हमेशा खुश रहा हंसते रहा कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला सुनते रहा कने थोड़ी देर छुट्टी अपनी एंजॉय करा कने अपने जो समय भी जरूर दिया।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: अरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप के पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू। बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: लुक लेट दिस, खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी दाढ़ी से मत खिलाओ। उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड़ जता के उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
7: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
7: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे,
7: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
7: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
5: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
7: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
8: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
9: ठीक तो है।
8: का ठीक है, ना चीनी है ना दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
9: क्या तो सही रही है निहारी का तो। मम्मी
8: क्या है?
9: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
8: आहा बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा
9: झूठ बोलती है,
8: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है, अच्छी तो बनी है। झूठ बोलता है, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना

0: ऑप्शन उनके लिए है। सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान पर रुचिका, ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब PG जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका, 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप की पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी,
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल रही है तू, बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है, हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए। ले बेटा
3: अपनी थाली से मत खिलाओ, उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड जता गए, उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं, आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में लग दो थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार, मैं संजय वाघमारे।
5: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
5: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
5: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
4: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
5: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
5: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
4: तो लगा लो ताला,
5: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
5: और अगर कोई OTP मांगे,
4: बरोबर
5: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
4: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आप

0: एटीएम पिन,
1: सीवीवी और ओटीपी जैसे डिटेल्स नहीं मांगता। और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
0: तो लगाओ मुंह पे ताला।
2: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई। काकू कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
3: ठीक तो है।
2: का ठीक है, न चीनी है न दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
3: क्या तो सही रही है निहारी का तो। मम्मी
2: क्या है?
3: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
2: आहा, बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा,
3: झूठ बोलती है।
2: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है, अच्छी तो बनी है। झूठ बोलता है, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी। मजा आ गया। आहा।

92.2 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और श्रोताओं हम तो सो गीत अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर। क्या हालचाल ना तुंदे और क्या हालचाल ना तुंदे ग्रां रे, उम्मीद करना तो है भी ठीक और ग्रां भी बिल्कुल ठीक बुना। श्रोताओं कार्यक्रम लेकर हाजिर पहुंचेगा इंदी अपनी गप्पा त कार्यक्रम में श्रोतो आज गलबात करने असु कमल नैरियर बारे और यारे गीत असु इस कार्यक्रम में हुनने। तैयो श्रोतो कार्यक्रम रा आगाज कर देन कमल नैरियर इस गीता होगी बड़ा खूबसूरत गीता लोबिया। कमल नैरिय इस गीत अंदर बोलूं देन श्रोतो चनने लगे हो सारी रात वो लोबिया गेरी फेरी पलंगा लाए हो, हथे दिया घड़िया मत खोल दो बैरी लोके टाइम दिता ओ वैरिया। तो टाइम हिंदा भी बचगा कार्यक्रम रा आगाज करने रहा इस गीता होगे आइया इस कार्यक्रम रा आगाज कर देन शुरू।

92.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम इस समय चल रहा हिंदी अपनी गप्पा। एक कार्यक्रम सचिन कपूर सो की तो है बिल्कुल हुनु कर देने समय अपने अपने रेडियो सेट में श्रोत आइया कार्यक्रम जो हगो बढ़न देन और अगला गीत हूं देन कमल नहरी रा लाडलिए तो केवल लुंदन कमल नहरी है इस गीत अंदर लाडलिए गीत अंदर आइए श्रोत हूं देन है सब भी कि लगूंगी फराटी और केवल देन इंदे अपने कमल नहरी जी हूं देन ये गीत

92.2 मेगाहर्ट्ज उठे रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल, हिंदी अपनी गप्पा चल रही ना। कार्यक्रम होने कर दें सचिन कपूर सोगे बिल्कुल और लाइव और श्रोताओं कार्यक्रम अंदर आज कमल नहरी रे गीत है सब होनू कर देना। अगले गीत तेरी और बढ़ देना और अगला गीत है श्रोताओं सही जाया नंदराल हुआ। तो बल देन कमल नहरी जी इस गीता सही जाया नंदराल हुआ वो तो जो बांस रहने दें दे हो तो जने बांस लेंदे से रहने अंदर श्रोताओं तो निंदर तापू बड़ी छैल पेंदे है ना। तैया कमल नहरी जी के दिखे बांस रहने सो हूं देने है सब भी।

इक्यानवे दशमलव 2 MHz पर थी वीडियो गुंजन और बड़े प्यारे प्यारे गीत के शुभकामना नारी जी है इन दी कम्युनिटी ऑफ दी तुरे शोतो और हर बार कोशिश कर देन कि अपनी कम्युनिटी होगी लगाव रखन जुड़ाव रखन और इस तरीके रे और प्यारे प्यारे गीत के न सो अपनी गद्दी कम्युनिटी जो दीन। बहरहाल कार्यक्रम सचिन कपूर सो की हूँ कर देन तो है और चलिए शोतो अब अगला गीत हूं देन। मेरा बड़ा पसंदीदा गीत है डिस्को मेरे गद्दिया, बड़ा प्यारा गीत है शोतो कमल नहरी री आवाज में गीत सु जरूर हुना। कमल नहरी बलुंदे ने इस गीता की डिस्को मेरे गद्दिया दणके सुधारा छड़ीता है ना, मेरे मेरे बिजली भी लगिया अंबर भी गरजो और क्या क्या बलुंदे ने कमल नहरी जी कड़ी कड़ी क्या क्या गरजो सो हूं लेन देन शोतो है सब तो है बनी रहा 91.2 MHz पुठी वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने बन रही।

बड़ा मजे छुंदा आनंदित छुंदा इस कार्यक्रम होने रहा क्योंकि गीत चल रहे आज कमल नहरी है दर्शकों तो सब सचिन कपूर सो गी बन रहे ना और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा इस वक्त चल रहा तुम दे सब भी वे वीडियो सेट मा तुम दे सब भी ऐप मा तो यह कार्यक्रम जो और हगू बढ़न देन और अगला गीत कमल नहरी जी रहा होन देन संसारो बिल्लू पैसे थिए ओ संसारो पैसे थिए मिये दोस्ते लोरे थे सो दिन कैसे थिए तो जाने दोस्ती लगे गंदे श्रोता हूँ तो सो दिन कैसे बुंदा है सो सो सब भी पता है ना दोस्ती और दिल लगे ये चीज ही अनोखी है ये लगे अच्छा ता भी बेड़ा पार है ना लगा ता भी बेड़ा पार है तो और क्या बोलूं देने कमल नहरी जी कि बीणीपुर नचे वो संसारो बीणीपुर नचे तैया कमल नहरी जी नचाऊ देने असु सब भी श्रोता भी नचू कर देने आइए श्रोता हूँ अगर फराटी और लाई लेंदे ने इस गीता उठे

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो गुंजन धर्मशाला और हाँ तुम अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर। श्रोताओं कार्यक्रम जो आगे बढ़ंदन और अगला गीत होंदन टिक टिक टोकेरा रिवाजो सनी आरा टोकेदा रिवाज बड़ा आया हो नरी साहब टोकेरा रिवाज वाकई आ और नरी साहब सबनी वे टोके दे तुहे भी घड़ी दिंदन ते मुंजो छोरू पते आंदा हो ता चिट्टी चादर बछाने थल्ले हो ढकना के लाना हो तो ढकने री जरूरत नहीं नहरी साहब कार्यक्रम में माहौल ही तूना गर्मो गर्म के ढकने री क्या जरूरत पैनी आइए श्रोताओं आका फराटी और सही नहरी साहब रे इस गाने पुट्ठी।

91.2 MHz पुटी वीडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं कार्यक्रम इस वक्त चल रहा हिंदी अपनी गप्पा आनंदित छुगर्दन बुना तुसु सभी भी कार्यक्रम होने रहा क्योंकि कार्यक्रम में श्रोतों मजा इतना ज्यादा है छुगर्दन क्योंकि बंडुरा भी तो है सचिन कपूर सो गिन ना ता और नरी सब बेहतरीन बेहतरीन गीत है सब हूं करदन श्रोतों नरी सब शूटिंग रे दौरान किया सो काफी हद तक करखा करखा दिक्कत भी इंदी ने सो भी सामना करना पेंदी ने यूट्यूब में कह रहे गीत सो खरे तो लगते हैं बड्डी पिक्चर अंदर सो गीत खरे लगते हैं नचते खरे लगते हैं लेकिन इंदी पिट्ठी पुछू और इंजो तूना स्ट्रगल करना पैंता है श्रोतों चाहे सो डांसर बोन चाहे सो सिंगर बोआ चाहे सो कैमरा मैन बोआ चाहे सो मॉडल बोआ चाहे जो मर्जी बोआ है ना जितना भी यारी फैमिली यारा परिवार बुंदा सब भी हो गया सो काफी दिक्कत आ रहा सामना कदी कदी के आसो करना पैंता और कदी कदी तो ईजिली निकल जाता कि शूटिंग है यार दोता शूट कर लेंदे है ना लेकिन कणके कणके बुंदा श्रोतों उन्नी की बुच गए है ना तो यह श्रोतों कार्यक्रम में हूं ना वह अगला गीत सृष्टि री रचना हेरे वो देवी है हेरे वो मंगला दुए वो जमे दुए गोदा पाना पर त्रिया वो कलंक करा पाना वो त्रिया कलंक करा पाना आइया हूं देने ये प्यारा दिया गीत

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेईई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

0: कनिका, आरब की प्लेट किधर है? ये क्या तरीका है कनिका? 20 रुपए के चक्कर में खाना नहीं दोगी उसे? अरे बोल भी कुछ, भूखा सुलाओगी क्या उसे? 20 रुपए लिए उसने, और वो भी किसी और से नहीं, अपने बाप के पर्स से लिए। प्लेट दो उसे।
1: नहीं मम्मी जी।
0: क्या नहीं मम्मी जी?
1: दुनिया का पहला बच्चा थोड़ी पाल दिया तू, बच्चे तो गलती करते ही है, इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें खाना नहीं दे।
0: सुनाई दे रहा है कुछ?
2: प्लेट दे, खाने का मन हुआ होगा उसका, उसने ले लिए पैसे।
1: छोटे घर से है ना मम्मी जी, इसकी गलती नहीं है। हमने तो कभी 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपने बच्चे भूखे नहीं सुलाए।
0: ले बेटा
3: अपनी दाढ़ी से मत खिलाओ, उसने 20 रुपए निकाले नहीं है, चुराए, और ज्यादा लाड जता के उसकी इस बात को बढ़ाओ मत। और बहुत तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं। आज उसने 20 रुपए चुराए, आज अगर उसे टोका नहीं गया तो कल वो पता नहीं क्या करे। अब चुपचाप खाना खाने में मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगा।
4: नमस्कार,
5: मैं संजय वाघमारे।
4: मैं प्रकाश तांडेल।
6: मैं प्रज्ञा देसाई।
4: आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं।
6: वैसे तो हम कितने सारे ताले लगाते हैं,
4: मकान पर, दुकान पर,
6: तिजोरी पे 2 चाबी वाला ताला,
5: रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला,
4: फोन पे बटन वाला,
6: लेकिन वक्त आने पर हम एक जरूरी ताला लगाना भूल जाते हैं।
4: अगर फोन पर कोई आपसे आपका ATM पिन मांगे
5: तो लगा लो ताला,
4: और अगर कोई आपसे आपका CVV मांगे
6: तब,
4: और अगर कोई OTP मांगे,
5: बरोबर
4: लगाइए
6: मुंह पे ताला।
5: याद रखिए,
6: आपका बैंक कभी आपसे आपका ATM पिन,
4: CVV और OTP जैसे डिटेल्स नहीं मांगता,
5: और अगर किसी ने ये डिटेल्स मांगे
6: तो लगाओ मुंह पे ताला।
7: आए हाय, कितनी गंदी चाय बनाई काकू। कुछ भी कहो, मम्मी को चाय बनानी नहीं आती है।
8: ठीक तो है।
7: का ठीक है, न चीनी है न दूध है, सिर्फ पानी पानी की चाय है।
8: क्या तो सही रही है निहारिका तो। मम्मी
7: क्या है?
8: मम्मी कुछ भी कहो, आपको चाय बनानी नहीं आती है।
7: आहा, बढ़िया चाय बनी है, मजा आ गया। आहा,
8: झूठ बोलती है।
7: मैंने कब कही अच्छी नहीं बनी है? अच्छी तो बनी है।
9: झूठ बोलते है, आज से तेरी चाय बंद, तेरे को कोई चाय नहीं मिलेगी।
7: मजा आ गया। आहा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: बस।
1: आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: जी श्रोताओ, शुरू हो गया है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला और आप सभी हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम 6 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक होता है और ये है हमारी संध्याकालीन सभा। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आज बहुत संजीदा बातें करने वाले हैं हम कार्यक्रम में, क्योंकि आज है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस।
1: एक कुड़ी फंस गई।
2: कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
0: जी मैंने भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ कहना है अभी हमें आगे कार्यक्रम में, तो बस यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ। पहले ले लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

जी दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। तो आप तो देख ही रहे हैं हमारे आसपास धर्मशाला का मौसम कैसा बना हुआ है ना खूबसूरत। तो भाई जब भी आप धर्मशाला की ओर आएंगे तो फिर आपको ऐसी बहारें तो खुद ब खुद ही मिल जाएंगी, हमें लेके जाने की जरूरत ही नहीं। तो डेजिग्नेशन बता देती हूँ, 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला है। कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला।

भाई अब ऐसा मौसम होगा तो रफ्ता रफ्ता ये जो आगे लाइनें हैं ऐसा क्यों नहीं होगा। चलिए मौसम की बात हो रही है, मौसम के बारे में जान लेते हैं। तो आज बादल छाए रहे और साथ में हल्की बारिश भी हुई। जी हल्की तो नहीं कहेंगे, बारिश तो हुई ही है। सुबह तो ठीक ठाक बारिश हुई थी और दिन का अधिकतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मतलब शायद गया होगा, अभी कितना गया है वो तो हमें नहीं पता है। और आज बारिश की संभावना 55% थी तो वो तो हो चुकी है। और शाम के समय भी हल्की फुहारें और बौछारें पड़ने के आसार हैं, लेकिन अभी जब हम घर से निकले थे तो भाई ऊपर पहाड़ों पर तो धूप चमक रही थी। यानी कि वो जो गीत है ना बना हुआ, आज मौसम बड़ा बेईमान है, वो इस मौसम पे बिल्कुल फिट बैठता है। और हाँ श्रोताओं, एक बात का हमें बहुत दुख है, वो ये कि अभी भी कई किसानों की जो फसलें हैं ना वो एज इट इज खड़ी की खड़ी ही हैं, वो काट नहीं पाए किसी न किसी वजह से, और वो सब जो हैं वो नम गई हैं, यानी कि गीली हो गई हैं। और अब अगर एक दो धूपे पड़ेंगी तो उसके बाद फिर उनकी कटाई की जाएगी। तो श्रोताओं, हवा में नमी का स्तर काफी अधिक यानी लगभग 64% से 77% के बीच में रहा। और मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमारा भी कहीं जाने का सुबह सुबह प्लान था कि भाई आज हम राइडिंग पे जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। सुबह उठते ही देखा तो बारिश शुरू हो गई थी, तो वो प्लान हमको कैंसिल करना पड़ा। और हो सकता है बहुत सारे श्रोताओं के प्लान भी कैंसिल हुए होंगे, लेकिन आराम से आज का जो संडे का दिन है वो आपने खुशी खुशी मनाया तो होगा परिवार के साथ। और ये जो मौसम ही है ना, ये ही ऐसा ऐसे मौके देते हैं आपको कि जब आप अपने परिवार के साथ समय बिता पाएं। और परिवार के साथ समय कैसे बिताना चाहिए, थोड़ा सा मोबाइल से दूर होकर के। ऐसे नहीं कि चार पांच व्यक्ति बैठे हुए हैं एक ही कमरे में और सबके हाथों में मोबाइल है, तो फिर वो कैसा समय हुआ।

चलिए जॉगर्स पार्क फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जगजीत सिंह की आवाज है।

जगजीत सिंह की आवाज में भी जौगर पार्क फिल्म का गीत आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में जी आप सभी का स्वागत, जिन्होंने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन

ये हैं और उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक जो कि आज किसी न किसी खास वजह से अपना खास दिवस मना रहे हैं। ये 3 मई का दिन, आज रविवार का। तो ले लेते हैं हम अपने संध्याकालीन सभा का ये विचार। प्रतिभा किसी की जागीर नहीं होती, ये श्रम कठिन परिश्रम से ही चमकती है। जी, समझ में आ गया ना आपको कि प्रतिभा किसी की जागीर नहीं होती, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो ही ये आपको मिलेगी और विरासत में भी नहीं मिलती है श्रोताओं। अपने अपने हिस्से की मेहनत सबको करनी पड़ती है। अब देखिए ना, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, चाहे आप नर्तक हैं यानी कि डांस करते हैं, डांसर हैं, और या फिर आप गाना गाते हैं, आप सिंगर हैं, या फिर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, आप अच्छा बिजनेस करते हैं, और कितना मैं आपको बताऊं कि क्या क्या फील्ड हैं इस दुनिया में जिसमें कि आप काम करते हैं। अगर इन सब के नाम लेने बैठूंगी ना अभी तो शायद कार्यक्रम का समय यहीं पर मतलब इसी में चला जाएगा पूरा 2 घंटे। हमें शायद हो सकता है कि गीत सुनाने का मौका भी ना मिले। बोलने का मतलब ये है कि जिस जिस फील्ड में भी आप हैं ना, वहां पर रह करके ईमानदारी से काम कीजिए और उससे भी बढ़ करके खुशी से काम कीजिए। हो सकता है शायद मैंने ये बातें यहाँ से पहले भी कही हो, लेकिन जब भी मैं इस चेयर पे बैठती हूँ ना और इसे मैं समझती हूँ हॉट चेयर, और ये जो मेरे सामने है ना, ये है मेरा दोस्त माइक। और दोस्त मेरा इसलिए है क्योंकि यही एक माध्यम है जो कि मुझे मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाता है या फिर मुझे आप लोगों से मिलाता है। तो भाई, इस दोस्त को भी हम दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो निर्जीव चीज़ें होती हैं ना, जो हमारे आसपास में फैली पड़ी होती हैं, इनका भी कभी कभी धन्यवाद कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी बदौलत भी हम अपने कई सारे काम कर रहे होते हैं। हालांकि ईजाद तो इनको हम ही ने किया है, इंसानों ने ही किया है। तो हम ये बात कर रहे थे कि आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं तो अपना जो काम है खुशी से ईमानदारी से कीजिए, और जब किसी भी काम में खुशी जुड़ जाती है ना तो वो काम ऐसे चुटकियों में हो जाता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।

श्रोताओं, बातें बहुत सारी करनी है हमने आपसे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन हम बातें ही कुछ अलग अलग करते चले जाते हैं और समय होता चला जाता है। तो अब इस गीत के बाद ज़रूर हम इस विषय पर बात करेंगे।

यारों सब दुआ करो, मुख्य रूप से एक मशहूर एल्बम सॉन्ग है जो किसी बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा नहीं है। ये गाना मूल रूप से रामशंकर द्वारा गाया गया था और इसके एल्बम यारों सब दुआ करो का टाइटल ट्रैक है। इसके पुराने वीडियो में जस अरोड़ा नजर आए थे जो कि 90 के दशक में काफी लोकप्रिय हुआ था और हाल ही में इस गाने का रीमेक रिलीज भी हुआ है जिसे स्टेबिन बेन, मीट ब्रदर्स और दानिश साबरी ने गाया है। और नए म्यूजिक वीडियो में अपार शक्ति खुराना और जैस्मिन भसीन मुख्य भूमिका में हैं। खैर, हमने तो आपको ओरिजिनल वर्जन ही सुनाया है श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमने आपको ये जो नया वाला गीत है जो अभी अभी रिलीज हुआ वो सुनाया, बिल्कुल भी नहीं। हमें मालूम है कि वो पुराना गीत उसने कितनी धमाल मचाई थी, तो ये वही था जो अभी अभी आपने सुना। और हमें पता है कि इस तरह के भूले बिसरे गीत सुनकर के आपके चेहरे पर भी खुशी आ ही जाती है। और श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं जल्दी से हम 3 मई के ऐतिहासिक महत्व के बारे में। भारतीय सिनेमा की शुरुआत भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र आज ही के दिन मुंबई में प्रदर्शित हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी दिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में और भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई थी 1913 में। और इसके साथ ही भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन 3 मई को हुआ था 1969 में।

श्रोताओं, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं 6:30 पे, मतलब कि घड़ी, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 6:30 हो चुके हैं। ये समय होता है एक छोटे से अंतराल का।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊं रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलाउड सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं श्रोताओं। और क्या खोया क्या पाया हमने जिंदगी से, देखिए ना कितनी दुख भरी खबर जो है वो हमारे सामने आई है आज। आज रविवार को 3 मई 2026 की सुबह है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में एक बड़ा बस हादसा हुआ है। ये दुर्घटना कांगड़ा के नूरपुर इलाके में नियाजपुर के पास नेशनल हाईवे पर हुई। खबरों के अनुसार देवी दर्शन नाम एक निजी बस जो कि चंबा से ऊना जा रही थी अचानक अनियंत्रित होकर के सड़क पर ही पलट गई। घायलों की संख्या करीब बस में 40 यात्री सवार थे। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार तो लगभग 24 से 26 यात्री घायल हुए और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में घायलों की संख्या 40 तक ही बताई जा रही है। श्रोताओं, चश्मदीदों और दीदों और पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार चलती बस में ड्राइवर को अचानक सीने में दर्द या हार्ट अटैक आया था, जिससे कि उसने बस पर से नियंत्रण खो दिया था और बस पलट गई। और इस हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंच गए थे। पुलिस और प्रशासन की टीम ने घायलों को बस से बाहर निकाला, तुरंत नूरपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। ड्राइवर सहित 4-5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो श्रोताओं, हमने बहुत सारे सपने संजोए होते हैं कि हम जिंदगी में ये करेंगे वो करेंगे, हमारे अगले ही पल का पता नहीं होता। इसीलिए हमने आपको ये गीत भी सुनवाया कि भाई जो भी करना है बस अभी इस पल में ही है, आगे पीछे कुछ भी नहीं रखा। यानी कि देखिए ना, हम क्या करते हैं कि इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, इन सब चीज़ों में फंसे रहते हैं। और कल यही बात हमारे एक और आरजे ने यहाँ से कही थी और मुझे उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी थी। हम जिंदगी को खुल करके जीते ही नहीं, बस इन्हीं सब चीजों में फंसे रहते हैं, या फिर हम केवल पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं कि हम बस कमा लें और उसको बचा लें, और फिर लाइफ में एक दिन अच्छे दिन आएंगे जब तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे, या फिर हम इन कामों के लिए उनको रख लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कहते हैं ना, ये करें और वो करें, ऐसा करें वैसा करें, जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिन में हम क्या क्या करें। सुनी है आपने वो गजल, जरूर सुनाऊंगी किसी दिन इसी कार्यक्रम में। फिलहाल तो आपसे हम बड़ी गंभीर बात जो कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि आखिरकार ये 2 दिन की जिंदगी में हम क्या क्या कर सकते हैं। करना तो वैसे हमें जो हम कर सकते हैं वो करना ही चाहिए, लेकिन खुल करके हमें जीना चाहिए। जो भी कुछ हम कर रहे हैं ना, बस उसको खुश होकर करें। शुरुआत से हम कार्यक्रम की शुरुआत से आपसे यही कह रहे हैं, क्योंकि फिर जिंदगी आपको खुश होने या दुखी होने का मौका नहीं देने वाली है, एक बार हाथ से फिसल गई तो। जो व्यक्ति ऐसे हादसों से बच करके वापस आते हैं ना, आपको पता है उनका जिंदगी जीने का नजरिया एकदम बदली हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर वो अपने अलग ही एक रास्ते पे चल पड़ते हैं, वो अलग कहानियां बनाते हैं, और ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे आगे पीछे बिखरी पड़ी हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि जिंदगी केवल अपने लिए नहीं, अगर हम उसको दूसरों को भी शामिल करेंगे तब असली मायने होते हैं हमारी जिंदगी के।

दुश्मन फिल्म का ये गीत सुना अभी आपने लता मंगेशकर, उदित नारायण और उत्तम सिंह की आवाज़ों में। श्रोताओं, 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आपके लिए इस समय प्रस्तुत कर रही हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। चलिए अपने आसपास की कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, कल क्या होने वाला है, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर कि कल बिजली बंद रहेगी। और उससे पहले पहले आप अपने सारे जो जरूरी काम है वो कर लीजिएगा। तो 11 केवी योल फीडर के क्षेत्रों सिद्धवाड़ी, ग्योतो मोनेस्ट्री, योल बाजार, बन्नी, बनरोडू, चत्तेहड़, स्लेट गोदाम, थेरू, खारुल, खलुड़, बारग, नरवाणा, जलोह, तंगरोटी, रक्कड़, उथड़ा ग्रां, रसां, दरूनी, माता आदि क्षेत्रों में 4 मई को सुबह 9:30 बजे से साय कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। और यदि हो गया मौसम खराब या फिर कोई अन्य आकस्मिक आपदा पैदा हो गई तो ये कार्य स्थगित भी हो सकता है या आंशिक रूप से किया जा सकता है। कुल मिलाकर कि आप तैयार रहिएगा कि आपके क्षेत्र में बिजली जानी ही है। और हम लोग ना वैसे इरिटेट हो जाते हैं इन चीजों से कि भैया ये बिजली क्यों बार बार ये लोग बंद करते हैं। मेंटेनेंस भी कोई चीज होती है भाई। अगर आप लोग अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं करेंगे या फिर अपने घर को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर एक ना एक दिन उसका काम खराब ही तो होना है। ऐसी ही होती हैं हमारी ये विद्युत लाइनें भी, इनकी भी मेंटेनेंस जरूरी होती है और समय समय पर होनी ही चाहिए।

हरमनजीत और ज्योति नूरा की आवाजें हैं। आशुतोष, आपको ये बता दूं कि ये बस अभी अभी निकला गीत है, जस्ट अभी रिलीज हुआ है।

जी श्रोता, हरमनजीत की आवाज़ में सुना आपने ये पंजाबी गीत 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और आप भी सोचेंगे कि रिमझिम रिमझिम की झड़ी भाई अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही है। सुनिए ना कितना प्यारा सा ओरा है इस गीत में, इसका इंस्ट्रूमेंटल सुन ले या फिर हम इसका जो ओरिजिनल गीत है वो सुन ले। गुड इवनिंग, धर्मशाला कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ। और आपको बता दूं कि आज 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये दिन हर साल सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के महत्व को समझाने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यानी स्थापना जो है 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने की थी। बिजली के लिए सूरज की प्राकृतिक रोशनी और गर्मी का उपयोग करने के प्रति लोगों को प्रेरित करना, और इस दिन का महत्व यह है कि सूर्य की ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला एक स्रोत है। देखो, पुराने समय में तो हम सभी ये बातें समझते भी थे, जानते भी थे और इसकी ऊर्जा का भरपूर उपयोग भी करते थे, है ना श्रोताओं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, बदलता चला गया और हम भी उसके साथ साथ बदलते चले गए। और हम भूल ही गए हैं कि हमारे ये जो नेचुरल प्राकृतिक सोर्स हैं इनसे भी हमें बहुत कुछ मिल सकता है। और भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जैसे कि सोलर पार्क और पीएम सूर्य घर योजना के जरिए। और इसी जानकारी के साथ आपको

0: तब तक आपको ये भी बता दें कि आप 91.2 FM के साथ साथ ये कार्यक्रम हमीरपुर में दतवाल की आवाज से भी सुन रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 केंद्रों पर की जाएगी।
2: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: उधर केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तमिलनाडु में 62 और असम में 40 केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकाल, यानम और माहे में होगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सी स्पेस ने आज स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिससे भारत के निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये मिशन वैश्विक प्रक्षेपण मंच पर भारत के उन्नत स्वदेशी नवाचार का प्रदर्शन करता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अग्निकांड में हुए जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में आज अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 169 रन बनाकर हासिल कर लिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।

जुनून एल्बम से अभी आपने सुना ये गीत संयोनी। ये भी एक ऐसा ही गीत है जो कि अपने समय पर बड़ा मशहूर हुआ था, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे इसने। और आप बने हुए हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्म।

जी हाँ श्रोताओं, कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं हमारे बीच में ही होती हैं जो कि जाने के बाद भी महकती रहती हैं, और ऐसी ही एक शख्सियत थी डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और एक महान शिक्षाविद, उनके बारे में कुछ बातें करते हैं आपसे। वो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुस्लिम थे, और राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवा की थी। अपनी उच्च शिक्षा जर्मनी से पूरी की और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके वे लंबे समय तक कुलपति भी रहे।

भारत सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। और वो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निधन अपने कार्यकाल के दौरान ही हुआ। 3 मई 1969 को उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में ही दफनाया गया है। तो ये था संक्षिप्त सा परिचय भारत के तीसरे राष्ट्रपति और एक महान शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का।

तो था पीपली लाइव फिल्म से अभी आपने सुना गीत। और आप बने हुए हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी, गुड इवनिंग धर्मशाला। और अब बात करते हैं हम प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। तो भारत में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मुख्य रूप से दो अलग अलग तारीखों पर महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है और दूसरा विशेष रूप से भारत के लिए ही है। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो है 3 मई को यानी आज। और इसकी शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह दिन दुनिया भर में प्रेस की आजादी के सिद्धांतों का जश्न मनाने और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है।

और केवल दिवस मनाने से कुछ होता नहीं है, तो आपके लिए जो अभी गीत हमने सुनवाया पीपली लाइव फिल्म का, वो फिल्म तो आप जानते ही हैं कि कुछ ऐसे ही विषय पर बनी हुई है।

प्रदेश मेरा रंगरेज ये बाबू पिपली लाइव फिल्म का गीत आदित्य गढ़वी और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं आप, थोड़ी सी शॉर्टकट में बताती हूँ। एक छोटे से गांव पिपली की है जहां दो भाई नत्था और बुधिया अपनी जमीन खोने की कगार पे हैं क्योंकि वो बैंक का कर्ज नहीं चुका पा रहे। उन्हें पता चलता है कि सरकार उन किसानों के परिवारों को मुआवजा देती है जो कि चले जाते हैं किसी न किसी वजह से, तो कर्ज से बचने के लिए बुधिया अपने सीधे साधे भाई नत्था को वो कार्य करने के लिए राजी कर लेता है ताकि उसके परिवार को पैसे मिल सकें। और ये खबर एक स्थानीय पत्रकार के जरिए बड़े टीवी चैनलों तक पहुंच जाती है और जल्दी ही पूरा नेशनल मीडिया पिपली गांव में डेरा डाल देता है। और ये जो नत्था सिंह था ये रातों रात सेलिब्रिटी बन जाता है। चैनल उसकी हर छोटी हरकत को, जैसे कि वो क्या खा रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कब वो जा रहा है खेतों की तरफ, वो सारी जो है ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाने लग जाता है। और देखिए, जैसे अभी चुनाव नजदीक हैं, वैसे ही चुनाव नजदीक होने के कारण राजनेता भी इस मामले में कूद पड़ते हैं और सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों नत्था की जान बचाने के लिए उसकी उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में किसी को भी किसान की गरीबी या उसकी समस्या से कोई लेना देना नहीं। और पूरी फिल्म में वो नत्था डरा हुआ रहता है, भ्रमित रहता है। अंत में एक अफरा तफरी के दौरान एक ऐसा धमाका होता है और माना जाता है कि उसकी मौत हो गई, तो सरकार मुआवजे की घोषणा कर देती है। लेकिन फिल्म के अंत में ये दिखाया जाता है कि असल में वो तो मरा ही नहीं बल्कि वो शहर भाग गया और वहां पर एक निर्माण स्थल यानी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा होता है अपनी पहचान छिपा करके। तो श्रोताओ, ये तो थी कहानी, लेकिन अब देखिए ना इस फिल्म का महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कार्यक्रम में आगे। फिर भी हम आपको ये तो बता देते हैं कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है प्रेस की, ये सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों को नैतिक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में ये घोषणा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश भी डालती है। और अब पीपली लाइव का एक और गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर, जो कि बहुत ही मशहूर हुआ था। आइए सुनते हैं। और इस गीत को हम जितनी बार भी सुनेंगे ना श्रोताओं, उतनी बार हमें पसंद आएगा, क्योंकि महंगाई जो है ना, ये डायन, ये कभी कम होती ही नहीं, बढ़ती ही चली जाती है।

अरे कमा कमा के मर गए सैया, पहले तगड़े तगड़े थे अब दुबले पतले हो गए सैया। अरे कमा कमा के मर गए सैया, मोटे सैया पतले सैया।

0: खाया जात है।
1: पिपली लाइव फिल्म का ये गीत सुना अभी आपने रघुवीर यादव की आवाज में। और बाकी में ये गीत जो है ना, ये बहुत सटीक चोट तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक हास्यपुट लिए हुए भी है, क्योंकि मेरे साथ में जो टेक्निकल असिस्टेंट बैठी हुई हैं वो गीत सुन सुन कर बहुत हंस रही थी और साथ में मुझे भी हंसा रही थी। लेकिन सच में जो लोग इन सब चीज़ों से गुजरते हैं ना, उन्हें पता चलता है कि आखिरकार ये है क्या चीज़ें। ये जो फिल्म है ना, ये दिखाती है कि कैसे टीआरपी की रेस में मीडिया मानवीय संवेदनाओं को भूल करके किसी की त्रासदी को तमाशा बना देता है। और फिल्म ये दर्शाती है कि सरकारी योजनाएं और वादे अक्सर कागजों तक सीमित रह जाते हैं और गरीब किसान अंत में कहीं का नहीं रहता। अब देखिए, वो किसान हो या कोई व्यक्ति हो जो कि सिस्टम से परेशान हो, सभी का यही हश्र होता है। और शहरी बनाम ग्रामीण, ये इंडिया चमकता हुआ शहर और भारत संघर्ष करता हुआ गांव के बीच की गहरी खाई को दिखाती है ये फिल्म।

और ऐसा ही श्रोताओं एक फिल्म और भी आई थी, शायद आपको याद होगा, पेज 3। उसका एक गीत भी हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, और ये गीत है, आइए सुनते हैं।

तेजश्री फिल्म जिसे मधुर भंडारकर ने निर्देशित किया था 2005 में आई थी। भारतीय सिनेमा की एक बेहद प्रभावशाली फिल्म मानी जाती है और इसका महत्व इन बिंदुओं से, इन बातों से समझा जा सकता है। इसमें हाई सोसाइटी का असली चेहरा दिखाया गया है।

जो दुनिया बाहर से चमक दमक वाली दिखती है। अंदर से कितनी मतलबी, अकेली और अनैतिक है ये फिल्म उसे खूब बखूबी दिखा।

0: फिल्म के मुख्य किरदार माधवी यानी कोंकणा सेन शर्मा एक पत्रकार है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे एक पत्रकार की नैतिकता और मीडिया जगत की बाजारवादी सोच के बीच टकराव होता है। क्या पत्रकारिता सिर्फ मशहूर लोगों की पार्टियों को कवर करने के लिए है या फिर समाज के गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए? ये सवाल फिल्म का केंद्र है। और ये फिल्म समाज के प्रभावशाली लोगों के दोहरे चरित्र को भी दिखाती है। दिन में समाज सुधार की बातें करने वाले लोग रात की पार्टियों में किस तरह के अनैतिक काम करते हैं।
1: ख्वाबों की ये दुनिया है, ख्वाबों में ही रहना है।
0: इस बात को बिना किसी फिल्टर के दिखाया गया है।

यहाँ लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने के लिए करते हैं इस्तेमाल, और जब किसी का पतन होता है तो वही दोस्त उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। फेज 3 ने बॉलीवुड में रियलिस्टिक ड्रामा के दौर को मजबूती दी। इसने साबित किया कि बिना किसी बड़े सुपरस्टार के भी केवल एक मजबूत कहानी, कड़वी सच्चाई के दम पर फिल्म सुपरहिट हो सकती है और नेशनल अवार्ड भी जीत सकती है।

फिल्म के अंत में माधवी को एहसास होता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ली, ये सिस्टम तो बहुत गहरा है, फिर भी वो अपनी सच्चाई नहीं छोड़ती और ये फिल्म दर्शकों को ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि हम जिस ग्लैमर की दुनिया को आदर्श मानते हैं वो कितनी बनावटी है।

स्पेस 3 फिल्म का ये गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज में। श्रोताओं, 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। और हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और उसके ठीक बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444। अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044।
2: आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल होगी जांच, 17 मई को होगा मतदान। भाजपा ने कहा चुनाव के दौरान पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने और उनका हक छीनने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित बच्चों में मधुमेह को लेकर जारी किए दिशा निर्देश, और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 12वीं का परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच कल 4 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के अनुसार इन चुनावों के लिए प्रदेश में 1426 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 269 जबकि मंडी जिले में 214 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। उम्मीदवार 6 मई तक नाम वापिस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा। शहरी निकाय चुनावों के साथ ही प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नगर निकाय और पंचायत चुनावों के दौरान पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनावों की निगरानी व अनुशासन बनाए रखने के लिए भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा एक विशेष अनुशासन समिति गठित की गई है। यह समिति किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की स्थिति में तुरंत कार्यवाही की अनुशंसा करेगी। बिंदल ने कहा कि भाजपा इन चुनावों में पूरी मजबूती व एकजुटता के साथ उतर रही है और कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। प्रदेश भाजपा पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। पार्टी उपाध्यक्ष व विधायक विपिन परमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नगर निगम व नगर निकाय चुनाव तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को झूठे वादों से ठगा है और अब जनता उन्हें इन चुनावों में जवाब देने के लिए तैयार है। इन चुनावों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश है। राज्यसभा सांसद व कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने प्रदेश में हो रहे नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। धर्मशाला में आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम चुनावों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर वार्ड में उम्मीदवार उतारे हैं जिनमें नए चेहरों, युवाओं और अनुभवी नेताओं का संतुलन रखा गया है।
3: हिमाचल प्रदेश में जहां भी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस वहां पे जीत रही है। मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कहता हूं कि पालमपुर तो कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार भी वहां पे लगभग सभी सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। और जो आपकी स्मार्ट सिटी धर्मशाला की बात रही, यहां पे कांग्रेस पार्टी संगठित है, हर एक वार्ड में हमने कैंडिडेट दे दिए हैं, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संगठित है। और यहां पे जो है हम धर्मशाला में भी जो नगर निगम का चुनाव जीतने जा रहे हैं और यहां पे जो कांग्रेस के मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे।
2: विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर महिलाओं को हक देने के बजाय उनका हक छीनने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सम्मान निधि के नाम पर महिलाओं को सम्मान देने वाली योजनाएं बंद की हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 18 से 69 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अपने इस अपमान को कभी नहीं सहेगी और इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र में आज एक निजी बस के अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटने से 26 यात्री घायल हो गए। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और सांसद अनुराग ठाकुर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आनी में कल शाम हुई सड़क दुर्घटना में घायल 2 अध्यापिकाओं का आज IGMC शिमला में कुशलक्षेम जाना। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कुल्लू पीपल्स एसोसिएशन शिमला के अध्यक्ष ने भी शिमला से जारी एक बयान में इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें गैर संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों और व्यवहार संबंधी चिंताओं सहित आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को शामिल किया गया है। इसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक व्यापक और जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दिशा निर्देशों को जारी किया जाना प्रत्येक बच्चे के लिए सुलभ, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बीच केंद्र सरकार ने बच्चों में मधुमेह को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध करवाता है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल 4 मई को सुबह 11 बजे 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार 81,411 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये परिणाम पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगा। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर तुरंत अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। इस बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड ने CBSE सब कैडर स्क्रीनिंग टेस्ट 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाए रखने के लिए परिणाम सहित अंतिम उत्तर कुंजी भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग ने शिमला जिले के रामपुर स्थित खनेरी अस्पताल के नर्सिंग छात्रावास में टीबी मामलों से जुड़ी खबरों को भ्रामक बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि नर्सिंग छात्रावास में केवल 2 छात्राएं टीबी पॉजिटिव पाई गई थी, जिनका समय पर उपचार शुरू किया गया। इनमें से एक छात्रा पूरी तरह स्वस्थ है, जबकि दूसरी छात्रा नियमित इलाज पर है। विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने और केवल आधिकारिक व प्रमाणिक जानकारी पर ही विश्वास करने की अपील की है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज वर्षा व ओलावृष्टि हुई है। मौसम के इस मिजाज से तापमान में गिरावट आई है। सुबह के समय कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी जारी की है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
4: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ तूफान की चेतावनी जारी की है, जिसके लिए कल 5 जिलों सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 5 मई तक प्रदेश में मौसम के खराब बने रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 2 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर 5 मई तक रहेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओलों के साथ बारिश होगी। ऊंचाई वाले इलाके लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार

0: पंचायत में प्रधान पद के लिए पूनम शर्मा, उपप्रधान पद के लिए दाताराम शर्मा, बीडीसी सदस्य के लिए प्रियंका शर्मा के नाम पर सहमति बनी है। सर्वसम्मति से उपप्रधान चुने गए दाताराम शर्मा ने बताया कि सभी पदाधिकारी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पंचायत के विकास को नई गति देने की कोशिश की जाएगी। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने सहित विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में यूनेस्को के वर्ष 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय पत्रकारिता ने हमेशा समय की चुनौतियों के बीच खड़े होकर सच की आवाज बुलंद की है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी मीडिया जगत से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल होगी जांच, 17 मई को होगा मतदान। भाजपा ने कहा चुनाव के दौरान पार्टी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने और उनका हक छीनने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित बच्चों में मधुमेह को लेकर जारी किए दिशा निर्देश और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 12वीं का परीक्षा परिणाम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं।
1: रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं और बस कार्यक्रम में थोड़ा सा ही समय रह गया है, तो इस प्यारे से गीत के साथ अब ज्योति पठानिया को दे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जल्द मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलाउड सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे।
2: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
3: क्यों, क्या हुआ?
2: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
3: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ। जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
4: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
3: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
4: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है, और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे।
6: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
7: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ। जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTC सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे।
6: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
7: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ। जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं तेरा पीछा ना ना।

इशारे ये अदाएं, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे मैं तो

तोबा तोबा ये निगाहें, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, अरे कर दे शराब जिसे चाहे जिसे।

0: चले आते हैं
1: मेरी जूती से
0: जूता पॉलिश करेगा आह जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा।

0: ये तो बताओ हमको,
1: तू मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा, छप छप छप छप छप छप, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हम

तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए शाम मस्तानी।

एक रोज जिंदगी के रूबरू आ बैठे। जिंदगी ने पूछा, दर्द क्या है, क्यों होता है, कहां होता है, यह भी तो पता नहीं चलता। तन्हाई क्या है आखिर, कितने लोग तो हैं, फिर तन्हा क्यों हो। मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा, मैं तुम्हारी जुड़वा हूं, मुझसे नाराज ना हुआ करो।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

Master, Dina, Master.

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।